प्रसाद सुपुरख निरंजन हर पुरख निरंजन हर अगमा अगम पारा सब त्याबह है सब त्याबह है तुझी हर सच्चे सिर जनहारा सब जीत माड़े जी तू जिया खादा तारा हर त्या हुसन तो जी सब दुख विसारण हारा

लहाव जप तप संजम धर्म न कमाया सेवा साधन जनया हर राया कहु नानक हम नीच कर्मा चरण परे की राखहु शरमाओ जप

चौपाई को कह चौपाई संबत 1750 जाय अर्ध सहस्पुण तीन कह जाय भाद्रव सुधी अष्टमी रवारा तीरस तद्रव ग्रंथ सुधारा इत श्री चरित्रुप ख्याने त्रिया चरित्र मंत्री भूप संवादे 405 चरित्र समाप्त मस्त शुभ मस्त आप जून दोहरा दाह जान कर दास पाड़ो कीजा कृपा अपारो आप हाथ दराख मोहे मन करम बचन बिचार चौपाई मैं न ग्रेसा प्रथम नाओ केशन बेशन कबूंडा त्याऊ कान सुने पहचान तिन सो लिव लागी मोरी पग इन सो महकार रखबार मारो महलो मैं किंकर थारो अपना जान करो रखवारू बाहे गहे की लाज बिचारू अपना जान मुझाए प्रत परिये चुन चुन सत्तर हमारे मरिया देग तेग जग में दो चलाए राख राख आप मोह और न दलाए तुम मम करो सदा प्रतपारा तुम साह में दास तिहाराओ जान अपना मुझाई नवाजो आप करो हमरे सब काज

पावहंगे भगवंत दोहरा। कालपुर की देह मो कोटक बेसन महेश, कोटिंदर ब्रह्म कितै राक्षस करोर जलेश दोहरा। राम कथा जुग जुग अटल, सब कोई पाखत नेतो, सुर्ग बास रग बर कराओ, सगरी पुरी समेतो चौपाई। जो एह कथा सुनाए अर गावै, दुख पाप तेहे निकट न आवै, बेसन भगत की ए फल होई, आद बे आद सब सकै न कोई। सम्मत 1750 हाड़बदी प्रथम सुख दावन, प्रसाद काडु ग्रंथ सुधारा, भूल परी लहु लेव सुधारा दोहरा। नेत्र तों के चरण तर तद्रव तीर तरंग, श्री भगवत पूर्ण कियो रग बर कथा प्रसंग। साध साधु जानो नहीं बात, बात बेबादो ग्रंथ सकल पूर्ण कियो, भगवत कृपा प्रसाद सवैया। पाए गह जब ते तुमरे, तब ते को आंख तरे नहीं आने, राम रहीम पुराण कुरान अनेक कह मत, एक न माने सिमरत शास्त्र वेद सबाई, बहु भेद कह हम एक न जाने। श्री अस्पान कृपा तुम्हारी खारू, मैं न कहो सब तोहे बखाने दोहरा। सागल द्वार को छाड़ कह गहो तुहारो द्वार, बाहे गहे की लाज अस गोबिंद दास तुहार।

आनंद पाया मेरी माई सतगुरु मैं पाया सरगुरता पाया सहज स्थिति मरवजिया बधाइया राग रतन परवार प्रिया शब्द गा बड़े आईया शब्दोता गाबो हरि केरा मन जनी बसाया कह नानक आनंद होवा सतगुरु मैं पाया ए मन मेरे आ तू सदा रहो हरनाले हरनाल रहो तू मन मेरे दुख सब सारना अंगीकार ओह करे तेरा कार सब सवारना सबन गलं समरथ स्वामी सो क्यों मनहु बसारे कह नानक मन मेरे सदा रहो हरनाले सचे साहिबा क्या नाही करते रही करता तेरा सब किच है जिस देह सो पावे सदा सिफत सलाह तेरी ना मन मसावे नाम जिन कह मन मसिया वाजी शब्द कनेरी कह नानक सचे साहिब क्या नाही करते रह साचा नाम मेरा आधारू सत नाम आधार मेरा जिन भुखा सब गवाईया कर शांत सुख मन वसिया जिन इच्छा सब पुजाईया सदा कुरबान कीता गुरु बिट्टा हो जिस दिया एह वड्याईया कह नानक सुन हो संत हो शब्द धरो प्यारो साचा नाम मेरा आधारू वाजे पंच शब्द तित कर सभागै कर सभागै शब्द वाजे कला जित कर थारिया पंच दूत तुद वस कीते काल कंटक मारिया तुरकन पाया तो जिनकाओ से नाम हर कै लागे कह नानक तह सुख हुआ तित कर अनहद वाजे आनंद सुनहो वडभागी ओहो सगल मनोहर पूरे पार ब्रह्म पाया उतरे सगल वसूरे दुख रोग संताप उतरे सुनी सच्ची बाणी संत साजन पहे सरसे पूरे गुरते जानी

विचारो अमृत नाम ठाकुर का पयो जिसका सब साधारो जे को खावै जे को पुंचा तिसका होय उधारो एहि वस्तु तजी न जाई नित नित रख और तारो तम संसार शरण लग धरियै सब नानक ब्रह्म प्रसादो सौक महला पंजवा तेरा कीता जा तू नाही मैनू जोग की तोई मैं निर्गुण यारे को गुण नाही आपे तरस पियोई तरस पिया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिले ता जीवा तन मन थी वै हरिया तरस पिया मेहरा मत होई सतगुर सज्जन मिलिया नानक नाम मिला ता जीवा तन मन थी मैं हरिया पौड़ी तिथे तू समरथ जिथे कोय नाहे उथे तेरी रख अग्नि उदर माहे सुन कै जम के दूत नाई तेरा छड़ जाहे पाओ जल बिकम सगाहु गुर शब्दी पार पाहे जिन को लगी प्यास अमृत से खाहे कल मैं एहो पुन गुण गोविंद गाहे सबसे नू कृपाल संभाले साह साहे बिरथा कोई न जाए जिया वैत्याहे श्लोक महला पंजवाओ

हमें दृष्ट सब कर हर अकपाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वस सब बल सदा सुख मन वस दुख संसार है कुवे गुर नव निद दरिया जन्म हम काल खतोवे सुख कहो टल गुर सेविया अहनस सहज सुभाए दर्शन परसे गुरु का जन्म मरण दुख जाए वाहिगुरु साहिब जी राग सूही महला पहला घर तीजा

प्रभ दूर ना होई घट घट सोई तिसके नार सबाई आपे रसिया आपे रावे ज्यो तिस दी वडियाई।

नानक आपे जोग सजोगी नदर करे लिव लाइया फिर उचड़िया माडड़िया तिहलो आसर ताजा राम हाउ बिस्म पई देख गुणा अनहद शब्द अगाजा राम शब्द विचारी करनी सारी राम नाम निसाणो

साहिब जी, सिर मस्तक रखिया पार ब्रह्मन, हस्तकाया रखिया परमेश्वर है, आत्म रखिया गोपाल स्वामी, तन चरण रखिया जगदीश्वर है, सर्व रखिया दुर्दयाल है, पैर विनाशन है, भगत वचल अनाथ नाथे, सरन नानक पुरख अचुत है, घोर दुखियादम मिटांत सगल स्मरंत हर नाम नानक, जैसे पावक काष्ठ भस्मन क्रोध, सूरत महल्ला पंजवा, गुरकास बदरखवारे, चौकी चौगिरद हमारे, राम नाम मन लागा, जम लज्जा ए कर भागा, रब जी तू मेरो सुखदाता, बंधन काट करे मन निर्मल, पूरन पुरख विधाता, रहाओ नानक प्रभ अविनाशी, ताकि सेव न दुखी जासी, अनंत करह तेरे दासा, जग पूरन हुई आसा, बिलावल महल्ला पंजवा, ताकि भावना लग गई पार ब्रह्म सनाई, चा गिरद हमारा रामकार, दुख लग्या ना पाई, सतगुर पूरा भेटिया, जन बनत बनाई, राम नाम औखद दिया, एका लगलाई, रहाओ राख लिए तन रखन हार, सब ब्याद मिटाई, कहु नानक कृपा पही, प्रभ पहे सहाय, सलोक जह साधु गोबिंद भजन, कीर्तन नानक नीप, प्रणा हावना तुन हषट है, नित न जाइय दूत, सलोक महला मन चितवनी, उत्तम कराओ उठ नीत, हर कीर्तन का आहरो, हर देह नानक गीत, सोहला राग गौड़ी दीप की महला पहला, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कर कीर्त आखिया, करते का हो विचारू, जिस घर हो सोहला, सिवरे हो सिर जो, तुम गाव हो मेरे निर्भव का सोहला, नित नित जीवड़े संभालिया, देखा का दे बनहार, तेरे दोने कीमत नाप है, इस दातु कवन सुमार, संत साहा लिखिया, मिल पर पाव हो तील, देव सजन असीसिया, जो बोला सारिक सुंगेन, कार कार एहो पाहुचा, सगड़े नित पवन, सदन हरा सिमरिया, नानक से देह आवन, राग असा महला पहला, छे कार छे गुर छे उपदेश, गुर गुर एको बेस अनेक, बाबा जय कर करते कीर्त होए, सो कर राख बढ़ाई होए, रहाओ जिस जसिया कर गया सहरा, तिवारी माँ हो हुआ, सूरज एको रप अनेक, नानक करते के कितने बेस, राग इतना श्री महला पहला, गगन मैं थाल रव चंद दीपक बने, तारका मंडल जनक मोती, धूप मल आन लो पवन चवरो करे, सगल बन राय फूलंत ज्योति, कैसी आरती होए पव खंडना तेरी आरती, अनहता शब्द वाजंत पेरी, रहाओ सहस तब नैन नन नैन है तोहे काओ, सहस मूर्त नना एक तो ही, सहस पद बिमल नन एक पद, गंध बिन सहस तब गंध इव चलत मोही, सब मह ज्योत ज्योत है सोए, तिसदा चानन सब मह चानन होए, गुर साखी ज्योत प्रगट होए, ज्योत सुभावै सो आरती होए, हर चरण कबल मकरंद लोभित मनु, अनदिनु मोहिया ही प्यासा, कृपा जल देहे नानक सारंग कहो, होए जाते तेरा नाय वासा, राग गौड़ी पूर्वी महला चौथा, काम क्रोध नगर बहु भरिया, मिल साधु खंडल खंडा हे, पूर्व लिखत लिखे गुर पाया, मन हार लिव मंडल मंडा हे, कर साधु अंजलि पुन वड्डा हे, कर डंडौत पुन वड्डा हे, रहाओ साकत हर रस साध न जानिया, तिन अंतर हम मैं कंडा हे, ज्यो ज्यो चल है चुभै दुख पाव है, जम काल सह है सिर डंडा हे, हर जन हर हर नाम समाने, दुख जन्म मरण पाव खंडा हे, अविनाशी पुरख पाया परमेसर, बहु सोब खंड ब्रह्मंडा हे, हम गरीब मस्कीन प्रभ तेरे,
हर राख राख वड वड्डा हे जन नानक नाम आधार टेक है हर नामे ही सुख मंडा हे राग गौड़ी पूर्वी महला पंजला करो बेनंती सुनो मेरे मीता संत टहल की बेला ईहा खाट चलो हर लाहा आगे बसन सहेला औध कट दिन सुरै नारे मन गुर मिल काज सवारे रहाओ एहो संसार विकार संसेम है तरियो ब्रह्म ज्ञानी जिस है जगाए पियाद एहो रस अकथ कथा तिन जानी जाको आए सुई बिहाज हो हर गुरते मन है बसेरा निज कर महल पाव सुख सहजे

यह सुख मग मुकुल संतन की अंतर जानी पुरख सर्वा मन की पूरे नानक दास यह मुकुल संतन पूरे।

नमस्तल प्रणामे समस्तल प्रणासे अगंजल नामे समस्तल निवासे निरकामं विभूते समस्तल स्वरूपे को कर्मं प्रणासी सुतर्मं विभूते सदा सचिदानंदं प्रणासी करिमल करिंदा समस्त निवासी अजाय विभूते गजाय विग्निमे हरियं करियं करिमल रहिमे चतुर चक्रवर्ती चतुर चक्र भगते स्वयं परुषवं सर्वदा सर्वयुक्ते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विपुते दुकालं प्रणासी दयालं स्वरूपे सदायंग संगे अपंगं विपुते। वाहिगुरु जी का खालसा वाहेगुरु जी की फतेह। एक ओंकार सतगुर प्रसाद पातशाही दसवीं त्वा प्रसाद सवैये श्रावक सद समूह सदान के देख फिरे घर जोग जति के सूर सरार्दन सुध सबाधक संत समूह अनेक मति के सारे ही देश को देख रहे हो मत कौन देख प्राण पति के श्री भगवान की भाई कृपा हूँ ते एक रति में करे रति के माते मतंग जरे जर संग अनुपातंग सरंग सवारे कोट तरंग करंग से कुदत पावन के गुण को जात नवारी भारी भजन के भूपलि बिद न्याव शीस न जात बिचारी इति भय तुकाह भय भूपत अंत को नागे ही पाए पधारे जीत फिराए सब देश दसान को बाजत ढोल मृदंग नगारे गुंजत गुड़ गजान सुंदर हिं सत ही है राज हजारे भूत भेक भवान के भूपत कौन गण नहीं जात बिचारे श्री पात श्री भगवान भजे बिन अंत को अंत के धाम सुधारे तीर्थ नान दया दमदानो सो संजम अनेक तीर्थ नान दया दमदानो सो संजम अने अनेक पसीखा है वेद पुराण देव पुराण जमीन जबान सबान की पिखा है पवन आहार जति जतारु सब सुबचार हजार क देखा है श्री भगवान भजे बिन भूपत एक रति मनेक न लिखा है शुद्ध सपाहा दुरंत बासु सासना दुर्जान दलांगे भारी गमन परे मन मैं कर पर्वत पंख हले न हलेंगे तोर अरीन मरोर मवासन माति मतंगण मान मलेंगे श्री पातशाही भगवान कृपा बिन त्याग जहान दान चलेंगे वीर पार बड़े बरे अरब चार एसार की धार पछैया तोर देश मिलिंद मवासन मातिक जान की मान मलैया गढ़ गढ़ान की तोड़ नहार सु बात नहीं चकचार लवैया साहिब श्री सब को शरणायक जाचक अनेक सुएक दवैया धर्म देव फणिंदर सात्र भूत पे भण जपेंगे जीव जिते जल मैं थल मैं पल ही पल मैं सब थाप थपेंगे पुन प्रतापन बार जा धुन पापन के बहुपुंज खपेंगे साध समूह प्रसन्न फिर जग सत्तर सब अब लोग चपेंगे मानव इंद्र गजेंद्र राध बुजाउन तरलो को राज करांगे कोट नानक जात गदार अनेक स्वयं प्रसाद बरांगे ब्रह्म महेश्वर विष्णु सब श्रीपत अंत पर जम पास परांगे जे नर श्री

भक्त ध्यान लगायो ना हाथ प्रियो लिये सास मंदर लोग उपर लोग गवायो बास कियो बिखियान सो बैठ के ऐसे ही ऐसे सो बैस बतायो सच का।

नमानयो सिमरत शास्त्र वेद समय बहुपेद कहे हम एक न जानयो श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखानयो। श्री असपान कृपा तुमरी कर मैं न कहो सब तो है बखानयो। दोहरा सगल द्वार को छाड़ के गहो तुहार द्वार बाह गह की लाज अस गोबिंद दास तुहार। सगल द्वार को छाड़ के

आप तू जाने है। जी जंत सब खेल तेरा क्या को अख बखाने अख तिख सब तू है जिन जगत पाया कह नानक तू सदा अगम है। तेरा अंत न पाया सौर नर मन जन अमृत खोज दे सो अमृत गुरते पाया पाया अमृत गुर कृपा कीनी सच्चा मन मसाया। जी जंत सब तुद उपाय एक वेक परसन आया लब लोभ अहंकार चुकाओ सतगुरु भला पाया कह नानक जिसनु आप उठाओ तिन अमृत गुर ते पाया।

का कूड गे थवा मोहल्ला पहला शाम कहे सितंबर स्वामी सच में अच्छे साथ रहे सबको साथ समा वैरिक कह रहा प्रभु राम नाम देवा मैसूर नाय लै प्राश्त जाहे नानक तो मुखंदर पाहे जुज मैं जोर चली छिंदरा अगले कान

0: अपराधी दूना निवा जो हंता मेरे गाय शीश निवा क्या थी है जर दे कुछ दे जाए महला पहला
1: पढ़ पुस्तक संध्या बादंग सर पूज सबक समाधंग चूड़ भूखं सारं त्रिपाल तहाल विचारं गलमाला तिलक लाटंग दो तोती वस्त्र कपाटंग जी जान सब्रह्मं कर्मं सबको निचु कर्मं

पौड़ी साहब हुए दयाल कृपा करिता साई कार कराई सी सो सेवक सेवा करे जिस हुकुम राई सी हुकुम मने हुआ प्रवानता खसम का महल पाई सी खसम भावै सो करे मनोच।

गौ को चारे शार्दूल कौडी का लख हुआ मूल। वाहे गुरु जी का खालसा, वाहे गुरु जी की फतेह। पतित पावन भगत वच्छल करुणा निदान कोट ब्रह्मंडा दे मालक गुरु गरीब निवाज श्री गुरु ग्रंथ साहिब महाराज सच्चे पातशाह जी दी पावन पवित्र गोछ विच सुभायमान जुड़ मिल बैठी गुरु प्यारी गुरु की साजी निवाजी साध संगत जीओ। सतगुरां दी अपार रहमत बख्शिश सदका वडभागी गुरसिख संगतां अमृत वेले तो गुरु दरबार अंदर सज रहे सुंदर दीवाना विच सुभायमान हो के सतगुरां दे पावन पवित्र दर्शन दीदारे अमृत बाणी श्री आसा जी की वार होर शब्दां दा रस पिन्ना शब्द कीर्तन सत्कार योग रागी जत्थे दी मुबारक रसना तो सरवण करके मिले हुए अमोलक अनुखा जन्म दे सुवासा घड़िया

चरण कमल नानक सरणाई। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। राम कली महला तीजा, आनंद एक ओंकार सतगुर प्रसाद। आनंद पाया मेरी माए, सतगुरु मैं पाया, सतगुर तब पाया सहज सेती। मन वजिया वादाहिया, राग रतन परवार परिया, शब्द गावने आईया, शब्द हो हरि केरा, मन जिनी बसाया। कह नानक आनंद होआ, सतगुरु मैं पाया, ए मन मेरे आ तू सदा रहो हर नाले। हर नाल रहो तू मन मेरे, दुख सब विसारना, अंगीकार हो करे तेरा कार्य सब सुवारना। सबना गल्ला समरथ स्वामी, सो के मन हो विसारे। कह नानक मन मेरे, सदा रहो हर नाले। साचे साहिबा क्या नाहीं घर तेरा, करता तेरा सब किछ है, जिस देह सो पावे। सदा सिफत सलाह तेरी, नाम मन वसावे, नाम जिन कै मन वसिया, वाजे शब्द कनेरे। कह नानक सच्चे साहिब क्या नाहीं घर तेरा, साचा नाम मेरा आधार, साच नाम आधार मेरा, जिन भुखा सब गवाइया, कर शांत सुख मन आए वसिया, जिन इच्छा सब पुजाईया। सदा कुर्बान कीता गुरु विट हो, जिस दियां एह वड्याईया। कह नानक सुनो संत हो, सबद तरहो प्यारो, साचा नाम मेरा आधार। वाजे पंच सबद तित कर सुभागा, कर सुभागा सबद वाजे, कला जित करत हरिया। पंच दूत तुद वस कीते, काल कंटक मारिया, तुरकर्म पाया तुद जिन कौ, से नाम हर कै लागे। कह नानक तह सुख हुआ, तित कर अनहद वाजे। आनंद सुन हो वड भागी हो, सगल मनोरथ पूरे, पार ब्रह्म प्रभ पाया। उतरे सगल बेसूर, दुख रोग संताप उतरे, सुनी सच्ची बाणी, संत साजन पए सरसे, पूरे गुरते जानी। सुनते पुनीत कहते पवित, सत गुर रहया भरपूरे, बिनवंत नानक गुर चरण लागे, वाजे अनहद तूर। सुनते पुनीत कहते पवित्ता, सत गुर रहया भरपूरे, बिनवंत नानक गुर।

0: ਦਾ ਰਾਖੂ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਇਸ ਲੋਕ ਗੁਰਦੇਵ ਮਾਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਿਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਵਾਮੀ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਖਾ ਗਿਆਨ ਭੰਜਨ ਗੁਰਦੇਵ ਬੰਦ ਸਹੋਦਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਦਾਤਾ ਹਰ ਨਾਮ ਉਪਦੇਸ਼ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਦਰੋਦਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਾਂਤ ਸਤਬਦ ਮੂਰਤ ਗੁਰਦੇਵ ਪਾਰਸ ਪਰਸਪਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਤੀਰਥ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਸਰੋਵਰ ਗੁਰਗਿਆਨ ਮੰਜਨ ਪਰੰਪਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਕਰਤਾ ਸਭ ਭਾਵ ਪੜਤਾ ਗੁਰਦੇਵ ਪਤਤ ਪਵਤ ਕਾਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਆਦ ਜੁਗਾ ਜੁਗ ਜੁਗ ਗੁਰਦੇਵ ਮੰਤ ਹਰ ਜਪ ਉਦਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਭ ਮੇਲ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਹਮ ਮੂੜ ਪਾਪੀ ਜਿਤ ਲਗ ਤਰਾ ਗੁਰਦੇਵ ਸਤ ਗੁਰ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਗੁਰਦੇਵ ਨਾਨਕ ਹਰ ਨਮਸਕਾਰਾ ਇਹ ਸਲੋਕ ਆਦ ਅੰਤ ਪਾਣਾ ਗੌੜੀ ਸੁਖਮੀ ਮਹਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਸਲੋਕ ਇੱਕ ਓਅੰਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਆਦ ਗੁਰੇ ਨਮੈ ਜੁਗਾਦ ਗੁਰੇ ਨਮੈ ਸਤ ਗੁਰੇ ਨਮੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰਦੇਵ ਨਮੈ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਿਮਰੋ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਸਸ ਪਾਓ ਕਲ ਕਲੇਸ਼ ਤਨ ਮਹਿ ਮਿਟਾਓ ਸਿਮਰੋ ਜਸ ਵਿਸੰਭਵ ਏਕੈ ਨਾਮ ਜਪਤੇ ਅਗਨਿਤ ਅਨੇਕੈ ਵੇਦ ਪ੍ਰਾਨ ਸਿਮਰ ਸੁਧ ਆਖਿਅਰ ਕਿਨੇ ਰਾਮ ਨਾਮ ਇੱਕ ਆਖਿਅਰ ਕਿਨਕਾ ਏਕ ਜੀਵ ਜਿਸ ਜੀਵ ਵਸਾਵੈ ਤਾਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮਗਰੀ ਨ ਆਵੈ ਕਾਂ ਕਿ ਏਕੈ ਦਰਸਵਾਰੋ ਨਾਨਕ ਉਨ ਸੰਗ ਮੋਹਿ ਉਦਾਰੋ ਸੁਖਮਨੀ ਸੁਖ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪ੍ਰਭ ਨਾਮ ਭਗਜਨ ਕੈ ਮਨ ਬਿਸਰਾਮ ਰਾਓ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਮ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਖ ਜਮਨ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਲ ਪਰ ਹਰੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁਸ਼ਮਣ ਟਰੈ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕਸ਼ ਬਿਘਨ ਲਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਿਨ ਅਣ ਦਿਨ ਜਾਗੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਭਉ ਨਾ ਬਿਆ ਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦੁੱਖ ਨਾ ਸੰਤਾਪੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਾਧਕ ਸੰਗ ਸਰਵ ਨਿਧਾਨ ਨਾਨਕ ਹਰ ਰੰਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਰਿਧ ਸਨੋਨਿਤ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਗਿਆਨ ਧਿਆਨ ਤਤ ਬੁੱਧ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਜਪ ਤਪ ਪੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਬਿਨ ਸੇ ਦੂਜਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤੀਰਥ ਸ਼ਰਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਦਰਗਹਿ ਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹੋਇ ਸੋ ਭਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸੁਫਲ ਫਲਾ ਸੇ ਸਿਮਰੈ ਜਿਨਾ ਸਿਮਰਾਏ ਨਾਨ ਤਾਂ ਕੈ ਲਾਗ ਉਪਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਾ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਤੇ ਉੱਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਉਦਰੇ ਮੂਚਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਬੂਜੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਭ ਕੇ ਸੁਜੈ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਾਇ ਜਮ ਤ੍ਰਾਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰਨਿਆਸਾ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਮਨ ਕੀ ਮਨ ਜਾਏ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਹਿਰਦਮਾਏ ਸਮਾਏ ਪ੍ਰਭ ਜੀ ਵਸੈ ਸਾਧ ਕੀ ਰਸਨਾ ਨਾਨਕ ਜਿਨਕਾ ਦਾਸਨ ਦੱਸਣਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇਤਨਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇਪਤਵੰਤੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਪਰਮਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪੁਰਖ ਪ੍ਰਧਾਨ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਵੇ ਮੋਤਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸਰਗ ਪੇ ਰਾਜੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਸੁਖਵਾਸੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸਦਾ ਅਵਨਾਸੀ ਸਿਮਰਨ ਤੇ ਲਾਗੇ ਜਨਾ ਅਬਜਿਆਲਾ ਨਾਨਕ ਜਨਕੀ ਮੰਗੈਰ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਪਰ ਉਪਕਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸਦਬਲਹਾਰੀ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਮੁਖ ਸੁਹਾਵੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਸੂਖ ਬਿਹਾਵੈ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਆਤਮ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਨਿਰਮਲ ਜੀਤਾ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਤਿਨ ਅਣਦ ਕਢੇਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੋ ਸਿਮਰੈ ਬਸਿਆ ਨੇਰੇ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾ ਤੇ ਅੰਦਨ ਜਾਗ ਨਾਨਕ ਸਿਮਰਨ ਪੂਰੇ ਭਾਗ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਾਰਜ ਪੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਭੂ ਨਾ ਝੂਰੇ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਹਨ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਸਹਿ ਸਮਾਨੀ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਨਿਚਲ ਆਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਕਰਮ ਵਿਗਾਸਨ ਪ੍ਰਭ ਕੈ ਸਿਮਰਨ ਆਨੰਦ ਚੁਨਕਾਰ ਸੁਖ ਪ੍ਰਭ ਸਿਮਰਨ ਕੰਤ ਨ ਪਾਰ ਸਿਮਰੈ ਸੇ ਜਨ ਜਿਨ ਕੋ ਪ੍ਰਭ ਮੈਂ ਨਾਨਕ ਤਿੰਨ ਸਰਨੀ ਪਾਇਆ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਰ ਭਗਤ ਪ੍ਰਗਟਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਲਗ ਬੇਦ ਪਾਏ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਭੈ ਸਿੱਧ ਜਤੀ ਦਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਨੀਚ ਚੌਂਕ ਉਂਠ ਜਾਤੇ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਧਾਰੀ ਸਭ ਧਰਨਾ ਸਿਮਰ ਸਿਮਰ ਹਰ ਕਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਕਿਉਂ ਸਗਲੇ ਅਕਾਰਾ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਮੈਂ ਆਪ ਨਿਰੰਕਾਰਾ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਜਿਸਿਆ ਬੁਝਾਇਆ ਨਾਨਕ ਗੁਰਮੁਖ ਹਰ ਸਿਮਰਨ ਤਿਨ ਪਾਇਆ ਸਲੋਕ ਦੀਨ ਦਰਨ ਦੁਖ ਭੰਜਨਾ ਘਟਕਨਾਥ ਨਾਥ ਸਰਨ ਤੁਮਾਰੀ ਆਇਓ ਨਾਨਕੇ ਪ੍ਰਸਾਦ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਜੈ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਸੁਤਮੀਤ ਨਾ ਭਾਈ ਮਨੁਆ ਨਾਮ ਤੇ ਸੰਗ ਸਾਈ ਜੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਦੂਤ ਜਮਦਾ ਲੈ ਤੈ ਕੇਵਲ ਨਾਮ ਸੰਗ ਤੇਰਾ ਚਲਿਆ ਜੈ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋਵੇ ਅਤ ਭਾਰੀ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਖਿਨਮਾਏ ਉਧਾਰੀ ਆਨਕ ਪੁਰੈ ਚਰਨ ਕਰਤ ਨੀਤ ਰਹਿ ਹਰ ਕੋ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾ ਪਰ ਰਹਿ ਗੁਰਮੁਖ ਨਾਮ ਜਪੋ ਮਨ ਮੇਰੇ ਨਾਨਕ ਪਾਓ ਸੁਖ ਨੇਰੇ ਸਗਲ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕੋ ਰਾਜਾ ਦੁਖੀ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤੋ ਸੁਖੀਆ ਲਾਖ ਕਰੋਰੀ ਬੰਧਨਾ ਪਰੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤਿਸਤਰਾਇਆ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਰੰਗ ਤਿਖਨ ਬਜਾਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਜਪ ਤਿਆਗਾ ਜੇ ਮਾਰ ਗਏ ਜਾਤ ਕੇਲਾ ਤੈ ਹਰ ਨਾਲ ਸੰਗੋ ਸੁਹੇਲਾ ਐਸਾ ਨਾਮ ਸਦਨ ਤੇ ਆਇਆ ਨਾਨ ਗੁਰਮੁਖ ਪਰਮਗਤ ਪਾਈਆ ਛੂਟ ਨਹੀਂ ਕੋਲ ਲਖਬਾਏ ਨਾਮ ਜਪ ਤੈ ਪਾਰ ਪੜਾਏ ਅਨਕ ਵਿਗਨੇ ਆਏ ਸੰਘਾਰੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤਤਕਾਲ ਉਧਾਰੈ ਅਨਕ ਜੋ ਜਨਮੈ ਮਰ ਜਾਮ ਨਾਮ ਜਪ ਪਾਵੈ ਬਿਸਰਾਮ ਹੋ ਮੈਲਾ ਮਲਕ ਉਗਨੋ ਧੋਵੈ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਕੋਟ ਪਾਪ ਖੋਵੈ ਐਸਾ ਨਾਮ ਜਪ ਮਨ ਰੰਗ ਨਾਨਕ ਪਾਈਆ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਜੇ ਮਾਰ ਕਿਗਨ ਜਾਏ ਨਾ ਕੋ ਸਾਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਹ ਸੰਗ ਤੋ ਸਾਜੇ ਪੈਂਡੇ ਮੈਂ ਅੰਧ ਗੁਬਾਰਾ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਸੰਗ ਉਜੀਆ ਰਾਜਾ ਪੰਥ ਤੇਰਾ ਕੋ ਨਾ ਛਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਤੇ ਨਾਲ ਪਛਾਣ ਨੂੰ ਜੇ ਮਾਂ ਭੈਣ ਤਪਤ ਬੋ ਕਾਮ ਤੇ ਹਰ ਕੇ ਨਾਮ ਤੁਮ ਉਪਰ ਸ਼ਾਮ ਜਾਂ ਤ੍ਰਿਖਾਵਨ ਤੁਝ ਆਕਾਰ ਖੈ ਤਾਂ ਨਾਨਕ ਹਰ ਅਵਰਤ ਬਰਖੈ ਭਗਜਨਾ ਕੀ ਬਰਤਨ ਨਾਮ ਸੰਜਨਾ ਕੈ ਮਨ ਵਿਸਰਾਮ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਦਾਸ ਕੀ ਓਟ ਹਰ ਕਾ ਨਾਮ ਉਦਰੇ ਜਨ ਕੋਟ ਹਰ ਜਸ ਕਰਤ ਸੰਤ ਦਿਨ ਰਾਤ ਹਰ ਹਰ ਰੁਖ ਸਾਧ ਕਮਾਤ ਹਰ ਜਨ ਕੈ ਹਰ ਨਾਮ ਨਿਦਾਨ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਜਨ ਕੀ ਨੋ ਦਾਨ मन तन अंग रते रंग एक नान जनक बिरत पवे कैर का नाम जनको मुक्त जुग धार कै नाम जनको तृप्त भुग धार का नाम जनका रूप रंगा नाम जप का प्रण भंग हर का नाम जनकी वडियाई हर के नाम जन शोभा पाई हर का नाम जनको भोग जोग हर नाम जप कशना वियोग जन राता हर नाम सेवा नानक पूजे हर हर देवा हर हर जन के माल खजीना हर तन जन को आप प्रभ दीना हर हर जन के ओट स्थानी हर प्रताप जन अब न जानी ओत पोत जन हर रस राते सुन स्वाद नाम रस माते हर पैर जन हर हर जप हर का भक्त प्रकनी छप हर की भक्त मुक्त वो करे नानक जन संकेत तरे पार जाते हर को नाम कामते हर हर गुण गाम सब त्यू तुम्हार की कथा नाम सुनत दर्द दुख लथा नाम की मैं संत रेव दस है संत प्रताप दुर्त सब नस है संत संग भागी पाई है संत की सेवा नाम त्याई है नाम तुल कशब न हो नान गुरमुख नाम पाव जन को श्लोक बहु शास्त्र बहु सिमृति पेखे सर पर ढोल पूज सनाई हर हरे नानक नाम अमोल पदी जाप ताप ज्ञान सब ध्यान खर शास्त्र सिमृत उख्यान जोग अभ्यास करम धर्म कर सग त्याग पन मन देख रहा अनक प्रकार की वो जतना पुन दान हो मैं वो रतना शरीर कटाए हो मैं कलराती वर्तने करे बो पाती नहीं तुरान नाम विचार नान गुरमुख नाम जपी एक बार नौ खंड पृथ्वी पृथ जीव माँ उदास तपीसर थी वह अग्न माय होम प्राण कनक असव है वरपूम दान न्यौली कर्म करै बो आसन जैन मार्ग संयम अत साधन निमख निम कर सिर कटावे तो भी होमे मैल न जावे हर के नाम संसर कृष्ण आये नान गुरमुख नाम जपत गत पाए मन कामना तीर दे छूटे कर माना मन ते हुटे सोच करे दिन सवेर रात मन की मैल न तन ते जात इस देह को वो साधना करे मन ते कबू न बिख्या टरा जल तवे वो दे नी सुध का होय काची पीत मन हर के नाम की महिमा उच नानक नाम उदरे पतत बहुमूच बहुत सयाण जम का भो बे आपै अनक जतन कर तृष्ण त्रापै भेख अनेक अग्नि बुझे कोट पावदर गैने सिजे छूट नाई उपयाल मोह बे आपै माया जाल अवर करतूत सगली जम डाने गोविंद भजन बिन तिल नी मल हर का नाम जब दुख जाए नानक बोले सह सुपाए चार पदार जे को मांगे साजना की सेवा लागा जे को अपना दुख मिटावे हर नाम विद्य सदगावे जे को अपनी शोभा लो रह सत्संग ए होमे छोरे जे को जन्म मरण तिड़ रह साजना की सरनी पर जिस जन को प्रभु दस प्यासा नानक ताके बल बल जासा सगल पुरख मैं पुरख प्रदान सा जंग का मिटे अभिमान आपस को जो जाना नीचे सोगुनी सब ते ऊंचा जाका मन सगल की ना हरा नाम तिन कट कट चीना मन अपने ते बुरा मटाना पे के सगल सिर साजना सुख दुख जन सब सेता नानक पाप पुण्य लेपा निर्धन को तन ते रो ना उन तामे को ना तेरा था उन्हें माने को प्रभ ते रुमान सगल टको देवो दान अन्य कराम हर स्वामी सगल कटा के अंतर जामी अपनी कदम जानो आपे आप प्रसंग आप प्रभ राते तुम रे उस तुम ते हो नानक अब न जानस को सर्व धर्म में श्रेष्ठ धर्म को नाम जप निर्मल करो सगल क्रिया में उत्तम क्रिया सा संग दुर्मत मल हिरया सगल उद में उदम पलार का नाम जपो जी सदा सगल मानी में अमृत मानी हर को जास सुंदर सुन बखानी सगल थान ते ओ उत्तम थान नानक जे कट बसे हर नाम श्लोक निर्गुण आरे अन्य सो प्रभ सदा संभाल जिनकी आतिस चीत रख नानक ने भी नाल अस्तवीर मैया के गुण चेत प्राणी कम मूर्ते कम दृष्टानी जिन तू सात सवार सिंगारिया गर्भ अग्न में जिन्हें उभारिया बार विविस्ता तुझे प्यार है दूध भर जो बन भोजन सुख सूद बिरद प्याओ प्रसाक सहन मुख प्याओ बैठ को दैन ए निर्गुण गुण कृष्ण बूझे बख्श लियो तो नानक सीजै जे प्रसाद धारो पर सुख बसै सुत भरात मीत बनता संघस जे प्रसाद पीवै शीतल जला सुखदाई पवन पावक अमूला जे प्रसाद भोगै सब रसा सगल समग्री संग सात बसा दीने अस्त पाव कर्ण नेत्र रसना तिसे त्याग और संरचना ऐसे दोख मुड़ंद व्यापे नानकार लिव प्रव्यापे आदंत जो रखनार तिसो प्रीतन करे गवार जाके सेवा न बिंद पावे तासे मूड़ा मन नहीं लावे जो ठाकर सदा हजूरे ताको अंधा जानत दूरे जाके टैल पावे दर गए मान तिसे बसारे मुक्त अजान सदा सदा भूल नहार नानक रखनहार अपार रतन त्याग कोड़ी संगरचया जो छड़ा शो रतन त्याग कौड़ी संगरचै साच छोड़ झूठ संग मचै जो छड़ना स्वस्थ त्रिकरमाने जो हुन सुदूर पुराने छोड़ जाय तिसका शर्म करै संग सहाय तिस पर रहै चंदन ले बतारै तोहे गर्द प्रीत संग संग होए अंध कूप मैं पतत बेकरार नान काल लियो प्रभ दयाल करतूत पशु की मानस जात लोक पचारा करे दिन रात बार भेख अंतर मनवाया शब्द नशकश करे छपाया बार ज्ञान ध्यान निशान अंतर व्यापै लोक सुहान अंतर अगन बार स्तन सुहा गल पाथर कैसे तरह था जाके अंतर वसै प्रभ आप नानक तेजन सहत समाज सुन अंधा कैसे मार्ग पावै कर गै ले उड़ निभावै कहाँ उजारत बूझे डोरा निस्कै तू समझे पुहरा कहां विष्णु पद गावे गोंग जतन करे तो भी सुर भंग कह पिंगल पर्वत पर भवन नहीं हो तू सुगवन करतार कणा मदीन बेनती करे नानक तुमरी कृपा तरै संग साहि सो आवे न चीत जो बेराय ता सुप्रीत बुलवे के गृह भीतर बसे अनकेल माया रंग सराय दिल क्रमाने मने प्रतीत काल न आवे मूढ़ी चीत बैर विरोध काम क्रोध मिको झूठ विकार महालोत्रो एह जुक्त म्याने कई जन्म नानक राख लियो आपन कर करण तू ठाकर तू पै अरदास जीव अपने सब तेरी रास तुम मात पिता हम बारिक तेरे तुमरी कृपा मैं सुख नेरे कोई न जाने तुमरा अंत ऊंचे ते ऊंचा भगवंत सगल समग्री तुमरे सूत्र धारी तुम ते सो आज्ञा करी तुमरी गत मित तुम ही जानी नानक दास दा कुर्बानी सलोक दिन हर पर छोड़ के ला गए हन सो आए इन्हां नूं कहो नसी जय बिना मैं पद जाए अष्टपदी दस वस्तु ले पाछे पावे एक वस्तकार बिखोट कवावे एक पीना दी दस पीहर ले तो मूड़ा को का करे जिस ठेको से ना ही चारा ताको की जैसा नमस्कार जाके मन लगा प्रा मीठा सर्व सूखता हूं मन उठा किसी जन अपना हुक्म नाया सर्व थोक नानक तन पाया ग्रंथ सा अपनी दे रास खात पीर्त बरते अंध और आस अपनी अमान का शिवार सारे अज्ञानी मनरोस करे अपनी प्रतीत आप ही खोवे वो उसका विश्वास ना होवे जिसकी वस्ते आ गया रखे प्रभ के आ गया माथे मास्ते माने माथे उसते चौगुन करे निहाल नानक साहेब सदा दयाल अनक पात्मा है के सर पर ओवत जान अनेत बिरखी शाय सो रंगला है ओविन से मन पछतावे जो दिशा चो चालनार लपटे उठते अंधार उठा उसे जो लावे ने ता गोत न आवे कि मन हर के नाम की भी सुखताय कर कृपा नानक आप ले लाई मिथ्या तन तन कुटाव समाया मिथ्या हो मैं ममता माया मिथ्या राजो मितन माल मिथ्या काम क्रोध विकराल मिथ्या रथ हस्तिया सुवस्त्र मिथ्या रंग संग माया पे खस्ता मिथ्या त्रोह मो अभिमान मिथ्या पशु प्रकृति कुमान अस्त्र पग साथ की शरण नानक जब जब जीव हर के चरण मिथ्या सर्वन पर निंदा सुने मिथ्या अस्त पर दर्प को हिरे मिथ्या नेत्र पेक्त पर त्रैन पान मिथ्या रसना भोजन स्वाद मिथ्या चरण पर विकार को तावे मिथ्या मन पर लोभ लुभावे मिथ्या तनी पर उपकार मिथ्या वास रेत बेकार है बिन बुझे मिथ्या सप है सबल दे नानक हर हर नाम ले वृत्ति सागत की यार जा सच बिना कह हुत सूचा बिरता नाम बिना तन अंग मुखावता कह दुर्गंध बिन सिमरन दिन रैन बिरता ब्याह मेघ बिना जो खेती जाए गोविंद भजन बिन बिरते सब काम जो कृपन के निरार्थ दाम धन धन तेजन जे कट बसे वर नाम नानक ताके बल बजाओ रहत अवर कश अवर कुमार मानी प्रीत मुखों गण लावत जाना नार प्रभु परवीन बार भेख न काहू भीन अवर उपदेश है अपना कराया अव जाव जन्म अमरा इसके अंतर बसे अनकार तिस किसी एक तरह संसार जो तो पाने तिर प्रभ जाता नानक कुन जन चरण प्राता करो बेनती पार प्रभ समझाने अपना की है अपे माने आपे आप आकर करत निबेरा किसे दूर जनावत किसे बुझावत निरा उपाव स्यान पसक तेरे सब के जाने आत्म के रह जिस भाव ते लै लड़ाए थान तरन तरह समाए सो सेवक जिस कृपा करे निमक निमक जप नान करी स्लो काम क्रोध अरलो मो बिनस चाहे अम्बे नानक प्रवसन आगति कर प्रसाद गुरुदेव अष्टपदी ये प्रसाद शक्ति अमृत खाए तिस ठाकर को रखमन माए जे प्रसाद सुगंध तन लावे तिसको सिमरत पर मगन पावे जे प्रसाद बसे सुख मंदिर तिसे ते आए सदा मन अंदर जे प्रसाद गृह संग सुख बसना पैर सिमरो तिस रसना जे प्रसाद रंग रस भोग नानक सदा ध्याई ते हवन जोग जे प्रसाद पाठ पटम ब्रहंडावे तिसे त्याग कत अवर लुभावे जे प्रसाद सुख से सुई जे मन आठ पैर ता का जस कवि जे प्रसाद तो सब को माने मुखता को जस रसन बखाने ये प्रसाद तेरो रहता धर्म मन सदा ध्याय केवल पार ब्रह्म प्रभु जब जब दरगे मान पावे नानक पास सिद्धि कर जावे ये प्रसाद आरोग कंचन दे लिवलावत सराम स्नेह जे प्रसाद तेरा ओ नारायत मन सुख पावे हर हर जस कह जे प्रसाद तेरे सगल सुंदर ठाके मन सरनी प्रभु ठाकुर प्रभु ता कह ये प्रसाद तो क्यों न पहुंचे मन सा सा सिमरो प्रभु ते जे प्रसाद पाए दुर्लभ दे नानक ताखी भक्त करे जे प्रसाद आप हुकुन पहरी जय मन तिस सिमरत के आलस की जय जय प्रसाद अस्वस्था सवारी मन तिस प्रभ को कबू न बिसारी जे प्रसाद बाग मिलक तना राग प्रोय प्रभ अपने मना जिन तेरी मन बंत बनाई उर्त बैठ सत से त्याय तिसे त्याय जो एक लख है इह नानक तेरी रखे जे प्रसाद करे पुन बोधान मन आठ पैर कर तिस का ध्यान जे प्रसाद तू उचा और बचा बिहारी तिस प्रभ को साथ साथ चितारी जे प्रसाद तेरा सुंदर रूप सो प्रभ सुनो सदा अनूप जे प्रसाद तेरी नीकी जा सो प्रभ सिर सना दे रहा जे प्रसाद तेरी पत्र है गुरु प्रसाद नानक गसका है जे प्रसाद सुने करण नाल जे प्रसाद देखे बिस्मा जे प्रसाद बोले अमृत रसना जे प्रसाद सुसह जी बसना जे प्रसाद हस्त कर चल है जे प्रसाद संपूर्ण फल है जे प्रसाद परम गत पावे जे प्रसाद सुसह सुमावे सब प्रत्याग कत लागो गुरु प्रसाद नानक बन जागो जे प्रसाद तू प्रसन्न जे प्रसाद तू प्रकट संसार तिस प्रभ को मूल अमन बिसार। जे प्रसाद तेरा प्रताप रे मन मूर तू ताको जाप। जे प्रसाद तेरे कार्य पूरे तिस जान मन सदा हजूर। जे प्रसाद तू पावे साच रे मन मेरी तू ता सिउ राच। जय प्रसाद सब की गत होए नान जाप जपे जप सोए। आप जपाए जपे सो नाम आप गुआए स्वर गुण गाओ। प्रभ कृपा ते होए प्रगास प्रभु दया ते कमलि विगास। प्रभ सो प्रसन्न बसे मन सोए। प्रभ दया ते मत उत्तम होए सर्व नान तर प्रे। प्रभ तेरी माया अपो कुछ न किन्हु लया। जित जे तला वह तित लगे हर नाथ नानक निका कशुन हसलोक। आगमगा पाप नाम सोए जो जो कैसे मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता साजना की अचरज कथा अष्टपदी। साधक संग मुख उजलो साध संग मल सगली खोत। साधक संग मिटे अभिमान साधक संग प्रगटे सुगान। साधक संग बुझे प्रेम रिया साध संग सबूत मेरा। साधक संग पाए नाम रतन साधक संग एक ऊपर जतन। साधक में मैं भरने कौन प्राणी नानक साधक की शोभा प्रमय समानी। साधक संग अगोचर मिला साधक संग सदा प्रफुल है। साध संग आवे पस पंचा साध संग अमृत रस पंचा साध संग हो सब की रेन। साधक संग मनोहर बहन साधक संग न कदू पावे साध संग असित मन पावे। साधक संग माए तिपिन साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न। साध संग दुसुम समीत साधु कह संग मा पुनीत। साध संग क्यों सुनि बैर साध संग नबी का पैर। साध संग नहीं को मंदा साध संग जाने परमानंद। साध संग नहीं हो ताप साध संग तजे सवाप। आपे जाने साध बढ़ाई नानक साध प्रभु बनाए। साध के संग न कबू तावे साधक संग सदा सुखावे। साध संग बसते को चले साधु के संग अदरसै। साधक संग बसे थान ऊंचे साधु के संग मैर पहुंचे। साध के संग दृढ़ सब धर्म साध के संग केवल पार ब्रह्म। साधक संग पाए नाम निधान नानक साधु के कुर्बान। साध के संग सबको लोधारे साध संग साजन मीत कुटम निस्तारे। साधु के संग सूत्र पावे जिस तंत्र सबको वरसावे। साध संग त्रमराय करे सेवा साध संग शोभा सुरदेवा। साधु के संग पाप लायन साध संग अमृत गुण गायन। साध के संग सर्वथान गम नानक साध के संग सब जन्म। साध संग नहीं किस काल दर्श पेट तो दिनाल। साध संग कलोक उतरे साध संग नरक पर रह। साध संग इहां उहां सवेला साध संग बिछरे तर मेला। जो छे सोई फल पाए साध संग बिरथा जावे। पार ब्रह्म साध रिद बसे नानक कुदरे साध सुन रसे। साध संग सुनो हर नाम साध संग हर के गुण गाओ। साध संग नवंते विसरे साध संग सर पर निस्त्रे। साध संग लगे प्रम मीठे साधु के संग कड़क डीठे। साध संग पे आगे करी साध संग गत पई हमारी। साध संग मिटी सब रोग नानक साध भेटी संजोग। साध की मैं भेद रंजाने जेता सुने ते तब बकेने। साध की उपमा ते गुण ते दूर साध की उमा रे भरपूर। साध की शोभा का नायन साध की शोभा सदा बेन। साध की शोभा उचती उची साध की शोभा मुचती मोची। साध की शोभा सद बनाई नानक साध प्रभेद पाई श्लोक। मान साचा मुख साचा सोए अवरा पेखे एक बिन हो कोए। नानके लक्षण ब्रह्म ज्ञानी हो अष्टपदे। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्लेप जैसे जल में कमल अलेप। ब्रह्म ज्ञानी सदा निर्दोख जैसे सूर सर्प को शोक। ब्रह्म ज्ञानी के दृश्यमान जैसे राज रंग को लगे तुलपवान। ब्रह्म ज्ञानी के धीरज एक जीव सुधा को खुदे को चंदन ले। ब्रह्म ज्ञानी के है गुनाह नानक जो पाप का सह स्वभाव। ब्रह्म ज्ञानी निर्मल ते निर्मला जैसे मेलन लगे जला। ब्रह्म ज्ञानी के मनोय प्रकाश जैसे तारु पर आकाश। ब्रह्म ज्ञानी के मित्र सत्र समान। ब्रह्म ज्ञानी के नहीं अभिमान। ब्रह्म ज्ञानी उचते उच्चा मान अपने सबते नीचा। ब्रह्म ज्ञानी सेजन पे नानक इन प्रभाव करे। ब्रह्म ज्ञानी सकल क्रीना तुम रस्म ज्ञानी जीना। ब्रह्म ज्ञानी की सब ऊपर मैं। ब्रह्म ज्ञानी तिख शुभरण पै। ब्रह्म ज्ञानी सदा समदर्शी। ब्रह्म ज्ञानी की दृष्ट अमृत बरसी। ब्रह्म ज्ञानी बनते मुक्ता। ब्रह्म ज्ञानी की निर्मल जुगता। ब्रह्म ज्ञानी का भोजन ज्ञान नान। ब्रह्म ज्ञानी का ब्रह्म ध्यान। ब्रह्म ज्ञानी के उपरास। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं बरास। ब्रह्म ज्ञानी का गरीबी समा। ब्रह्म ज्ञानी पर उपकारों बा। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं तंदा। ब्रह्म ज्ञानी लेता तो बंदा। ब्रह्म ज्ञानी सुफला। ब्रह्म ज्ञानी सुफल फला। ब्रह्म ज्ञानी संग सकल दार नानक। ब्रह्म ज्ञानी जप सकल संसार। ब्रह्म ज्ञानी का एक रंग। ब्रह्म ज्ञानी के बसे प्रभ संग। ब्रह्म ज्ञानी के नाम आधार। ब्रह्म ज्ञानी का नाम प्रवार। ब्रह्म ज्ञानी सदा सद जागत। ब्रह्म ज्ञानी अहम बुद्ध त्याग। ब्रह्म ज्ञानी के मन परमानंद। ब्रह्म ज्ञानी के कर सदा आनंद। ब्रह्म ज्ञानी सुख से अजनवास नान। ब्रह्म ज्ञानी का नहीं विनाश। ब्रह्म ज्ञानी ब्रह्म का बेता। ब्रह्म ज्ञानी एक संग हेता। ब्रह्म ज्ञानी का अचिंत। ब्रह्म ज्ञानी का निर्मल बंध। ब्रह्म ज्ञानी से करे प्रभा। ब्रह्म ज्ञानी का बड़ प्रताप। ब्रह्म ज्ञानी का दस बड़ भागी भाई। ब्रह्म ज्ञानी की बल बल जाइए। ब्रह्म ज्ञानी क्यों खोज मेसर नानक। ब्रह्म ज्ञानी है परमेश्वर। ब्रह्म ज्ञानी के क्यों बनाए। ब्रह्म ज्ञानी का सकल मन माए। ब्रह्म ज्ञानी का कौन जाने भेद। ब्रह्म ज्ञानी को सदा आदेश। ब्रह्म ज्ञानी का कथन जाया दे आखर। ब्रह्म ज्ञानी सर्व का ठाकुर। ब्रह्म ज्ञानी कीमत कौन बखाना। ब्रह्म ज्ञानी की गत। ब्रह्म ज्ञानी जाना। ब्रह्म ज्ञानी का अंत न पार। नानक ब्रह्म ज्ञानी को सदा नमस्कार। ब्रह्म ज्ञानी सब सृष्टि का कर्ता ब्रह्म ज्ञानी सदजीव नहीं मरता ब्रह्म ज्ञानी मुक्त जुग जी का दाता ब्रह्म ज्ञानी पूर्व पुरुष खुदाता ब्रह्म ज्ञानी अनाथ का नाथ ब्रह्म ज्ञानी का सब ऊपर आत ब्रह्म ज्ञानी का सगल कार ब्रह्म ज्ञानी अपनकार ब्रह्म ज्ञानी की शोभा ब्रह्म ज्ञानी बने नानक ब्रह्म ज्ञानी सर्व का धनी श्लोक उर्थर है जो अंतर नाम सुन मैं पीखे भगवान नेमक नेमक ठाकुर नमस्कार है नानक को अपर सगल निस्तार है अष्टपदी मिथ्या नाई रसना परस मन में प्रीत निरंजन दर्श पर त्रय रूप पीखे नेत्र साध गिट्याल संसंग हेत करना सुने का क्योंकि निंदा शब्द जाने आपस को मंदा गुर प्रसाद भिख्या पर हरा मन की वासना मन तिटर है इंद्री जित पंच दोग ते रहत नान कोट मन देखो ऐसा परस बैसनो सो जिस ऊपर सो प्रसान बिसन की माया ते हो पिन कर्म कर तो ऐ कर्म तिस बैसनो का निर्मल धर्म काउ फल की इच्छा निभा चय केवल भगत कीर्तन संग्रह चय मंत्र अंतर सिमरन गोपाल सब ऊपर हो कृपाल आप द्रैवर नाम जपावे नानक ओ बैसनो परम गत पावे भगवती भगवंत भगत का रंग सगल त्याग दुष्ट का संग मन ते बिन सगला परम कर पूजे सगल पार ब्रह्म सात संग पापा मन खोय तिस भगवती के मत उपन होवे भगवंत की टैल करे नित मरतन बिसन प्रीत हर के चरण हृदय बसावे नानक ऐसा भगवती भगवंत पावे सो पंडित जो मन प्रभु दे राम नाम आत्मा सोदे राम नाम सार अस पिय अस पंडित के उपदेश जग जीवे हर की कथा हृदय बसावे सो पंडित फिर जो नवे वेद प्राण सिमरत बूझे मूल सुख में जाने असूल चौर न को दे उपदेश नानक उस पंडित को सदा देश बीज मंत्र सर्व को ज्ञान चौवर न मैं जपे को नाम जो जो जपे तिसकी गतो ए सा संग पावे जंतु कोए कार के तारे पास प्रेत मुक्त पात्र को तारे सर्व रोग का उख नाम कल्याण रूप मंगल गुण काम काव जुगत कि तेरे पाए धर्म नानक तिस मिले जिस लिखया तोर कर्म जिस के मन
1: पार ब्रह्म का निवास तिसका नाम सत राम दास सुंदरी है दाज संदन पाए तन पाया सदा निकट निकट हर जान सोचदा दरगे परवान अपने दास को आप कृपा करें उसे दास को सब सुख पर सकलंग आत्मो दास ऐसे युक्त नानक राम दास प्रभु की आज्ञा आत्महिता वै जीवन मुख सो कहावै तैसा रक्त सब सुसोग सदानंद तै नहीं वियोग तैसा सुवर्ण तैसी सुमाटी तैसा अमृत तैसी बेखाटी तैसा मान तैसा विमान तैसा रंग तैसा राजान जो वरता साई जुगत नानक पुरख ये जीवन मुक्त पार ब्रह्म के सगले ठाओ जित जित कर राखे तसा ते नाउ आपे करन करा मन जोग प्रभ पावे सोई पुन हो कनु तसे आप हो अंत तरंग लखिरे जाय पार ब्रह्म के रंग जैसी मत दे तैसा प्रकाश पार ब्रह्म करता अविनाश सदा सदा सदा दयाल सिम सिमरन पहन हाल श्लोक उस तत्व ने करे अनेक जान अंतरा पारावार नानक रचना प्रवरची बहुविधनक प्रकार अष्टपदी कई कोड़ पुजारी कई कोड़ चार व्यवहारी कई कोड़ आचार व्यवहारी कई कोड़ पै तीर्थवासी कई गुण ब्रह्मान प्रमह उदासी कई कोड़ वेद का स्रोते कई कोड़ तपी स्रोते कई कोड़ आत्म ध्यान तार है कई कोड़ कव का विचार है कई कोड़ नव तनाम ते आवे नानक करते कांत न पावे कई कोड़ पै अभिमानी कई कोड़ आंदा ज्ञानी कई गुण कृपण कठोर कई गुण भगात मिन कोर कई कोट पर द्रव को ही रहे कई कुड़ पर दुख न करे कई कुड़ माया सर माए कई गुण प्रदेश परमाए जिद के तलाव होते तिथे तलगना नान करते की जान करता रचना कई कोड़ सिद्ध जति जोगी कई कोड़ राज रस भोगी कई कुड़ पंखी सर के उपाय कई कुड़ पात्र बिखने पजाए कई कोड़ बहुण बाणी वैसंतर कई कोड़ देश भूमंडल कई कोड़ ससिया सो नक्षत्र कई कोड़ देवदान मिंद्र सशत्र सगल समगरी अपने सूद धार नानक जिस जिस भाव है तिस तिस निस्तार है कई कोट राज सो ताम सो सातक कई कोड़ बेप्राण सिमरता शास्त्र कई कोड़ कीर्तन समुंद कई कोड़ नाना प्रकार जंत कई कोड़ किए जरजीव कई कोड़ गिरी मेर स्वर्ण थीव कई कोड़ जख अकिनर पसाच कई कोड़ भूत प्रेस उग्र मृगाच सब ते नेरा सब हुंते दूर नानक आप अलिप्त रहा भरपूर कई कोड़ पाताल के वासी कई कोड़ नरक सुरग निवासी कई कोड़ जन्म है जीवे में रहे कई कोड़ भोजनी फिरे कई कोड़ बैठती खाए कई कोड़ काले तक पाए कई कोड़ किए तनवंत कई कोड़ माया में चिंत जय जय पाणा तै तै राखे नांग सब शिवराव के हाथे कई कोड़ पै बैरागी राम नाम संग तेन लिव लागी कई कोड़ प्रको खो जानते आत्म पार मन लहंते कई कोड़ दर्शन प्राप्य आस तिन को मिले प्रभ अबनास कई कोड़ मांग सत्संग पार ब्रह्म तिला का रंग ਜਿਨਕੋ ਹੋਏ ਆਪ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ, ਨਾਨਕ ਤੇਈ ਸਦਾ ਸਦਾ ਧਨ ਧਨ। ਕਈ ਕੋਟ ਖਾਣੀ ਅਰ ਖੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਆਕਾਸ਼ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ, ਕਈ ਕੋਟ ਹੋਏ ਅਵਤਾਰ, ਕਈ ਜੁਗਤ ਕੀਨੋ ਵਿਸਤਾਰ। ਕਈ ਬਾਰ ਪਸਰੋ ਪਾਸਾਰ, ਸਦਾ ਸਦਾ ਇੱਕ ਇੱਕ ਅੰਕਾਰ, ਕਈ ਕੋਟ ਕੀਨੇ ਬੋ ਭਾਂਤ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਬ੍ਰਹਮਾ ਸਮਾਤ, ਤਾਂ ਕੰਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਈ ਆਪੇ ਆਪ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ। ਕਈ ਕੋਟ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਦਾਸ, ਤਿਨ ਹੋਵਤ ਆਤਮ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਕਈ ਕੋਟ ਤਤ ਕੇ ਬੇਤੇ, ਸਦਾ ਨਿਹਾਰੇ ਇੱਕੋ ਨੇਤਰੇ, ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਰਸ ਪੀਵੈ ਹੈ, ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਪੈਸਾ ਸਦੇ ਜੀਵੈ। ਕਈ ਕੋਟ ਨਾਮ ਗੁਣ ਗਾਵੈ, ਆਤਮ ਰਸ ਸੋ ਸਹਿ ਸਮਾਵੈ, ਆਪਣੇ ਜਨ ਕੋ ਸਾਥ ਸਾਥ ਸਮਾਰੇ, ਨਾਨਕ ਕੋਏ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੇ ਪਿਆਰੇ, ਸਲੋਕ ਕਰਨ ਕਾਰਨ ਪ੍ਰਭ ਏਕ ਹੈ, ਦੂਸਰ ਨਾਹੀ ਕੋਏ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਬਲਹਾਰਨ ਜਲ ਚਰਮਈ ਅਲ ਸੋਏ ਅਸ਼ਟਪਦੀ। ਕਰਨ ਗ੍ਰਾਮ ਕਰਨ ਜੋਗ, ਜੋ ਸਭਾਵੇ ਸੋਈ ਹੋਗ, ਕਿਨ ਮੈਂ ਤਾਬੂ ਤਾ ਪੁਨਹਾਰਾ, ਤਨੇ ਕਿਛ ਪਾਰਾ ਵਾਰ, ਹੁਕਮੇ ਤਾਰਾ ਦਰ ਰਹਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਉਪਜੇ ਹੁਕਮ ਸਮਾਵੇ, ਹੁਕਮੇ ਉਜ ਨੀਚ ਵੀ ਆਰ, ਹੁਕਮੇ ਅਨਕ ਰੰਗ ਪ੍ਰਕਾਰ, ਕਰ ਦੇ ਕੇ ਆਪਣੀ ਉੜੇ ਆਈ, ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਮੇਰਾ ਸਮਾਏ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਮਨੋਗਤ ਪਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਾਥਰ ਤਰਾਵੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਬਿਨ ਸਾਜਦਾਰਾਂ ਕੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਹਰ ਗੁਣ ਭਾਖੇ, ਪ੍ਰਭ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਪਤ ਤੋਂ ਉਧਾਰੇ, ਆਪ ਕਰੇ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰੇ, ਦੋਹਾਂ ਸਿਰਿਆਂ ਕਾਇਆ ਸੁਆਮੀ ਕੇਲੇ ਬਿਕਸੇ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ, ਜੋ ਭਾਵੇ ਸੋ ਕਾਰ ਕਰਾਵੇ, ਨਾਨਕ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਅਵਰ ਨਾ ਆਵੇ, ਕਹੋ ਮਾਨੁਖ ਤੇ ਕਿਆ ਹੋਇਆ ਆਵੇ, ਜੋ ਸੁਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰਾਵੇ, ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸਭ ਕਿਛ ਲੇ, ਜੋ ਸੁਭਾਵੇ ਸੋਈ ਕਰੇ, ਅਨਜਾਨ ਦੇ ਵਿਗਿਆ ਮੈਂ ਰਚੇ, ਜੇ ਜਾਣਦੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਬਚਾਏ, ਪਰ ਮੈਂ ਭੁੱਲਿਆ ਦੱਸਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਕ ਮਾਏ ਚਾਰ ਖੁੰਡ ਫਿਰੇ ਆਵੇ, ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਸਾਪਣੀ ਭਗਤ ਦੇ, ਨਾਨਕ ਤੇ ਜਨਾ ਮਿਲੇ, ਖਿਨ ਮੈਂ ਨੀਚ ਕੀਟ ਕੋ ਰਾਜ, ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ, ਜਾਂ ਘਰ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਕਸ਼ੂ ਨਾ ਆਵੇ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਲੈ ਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਤਿਸ ਤਤਕਾਲ ਲੈ ਦਿਸ ਪ੍ਰਗਟਾਵੇ, ਜਾਂ ਕੋ ਆਪਣੀ ਕਰੇ ਬਖਸੀਸ, ਤਾਂ ਕਾ ਲੇਖਾ ਨਾ ਕਰੇ ਜਗਦੀਸ, ਜੀਓ ਪਿੰਡ ਸਤਿ ਸਕੀ ਰਾਸ, ਕੜਕੜ ਪੂਰਨ ਬ੍ਰਹਮ ਪ੍ਰਕਾਸ਼, ਆਪਣੀ ਬਣ ਦਿਆ ਬਣਾਈ, ਨਾਨਕ ਜੀਵੇ ਦੇ ਗਵਡਾਈ, ਇਸ ਕਾ ਬਲ ਨਾਹੀ ਸਾਥ, ਕਰਨ ਕਰਾਉਣ ਸਰਬ ਕੋ ਨਾਥ, ਆ ਗਿਆ ਕਾਰੀ ਬਪੁਰਾ ਜੀ, ਉਹ ਜੁਲਸ ਭਾਵੇ ਸੋਈ ਬੁੰਦੀ, ਉਹ ਕਹੂੰ ਉਜ ਨੀਚ ਮੈਂ ਬਸੈ, ਕਹੂੰ ਸੋ ਕਰ ਖਰੰਗ ਹੱਸੈ, ਕਹੂੰ ਨਿੰਦ ਚਿੰਦ ਵਿਵਹਾਰ, ਕਹੂੰ ਬਕਾਸ ਪਿਆਲ, ਕਹੂੰ ਬੇਤਾ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਚਾਰ, ਨਾਨਕ ਕਿਆ ਬਣਾਵਣਹਾਰ, ਕਹੂੰ ਨਿਰਦ ਕਰੇ ਬੋ ਭਾਂਤ, ਕਹੂੰ ਸੋਇ ਰਹਿ ਦਿਨ ਰਾਤ, ਕਹੂੰ ਮਾਂ ਗਰੋਧ ਵਿਗਰਾਲ, ਕਹੂੰ ਸਰਬ ਕੀ ਉਹ ਦਰਵਾਲ, ਕਹੂੰ ਹੋਏ ਬਹਿ ਬੜ ਰਾਜਾ, ਕਹੂੰ ਭਿਖਾਰੀ ਨੀਚ ਗਾ ਸਾਜਾ, ਕਹੂੰ ਆਪ ਗੀਤ ਮੈਂ ਆਵੇ, ਕਹੂੰ ਵਾਹ ਭਲਾ ਕਹਾਵੇ, ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਰਾਖੈ ਤਿਵੇ ਹੀ ਰਹੇ, ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਸੱਚ ਕਹੇ, ਕਹੂੰ ਹੋਏ ਪੰਡਿਤ ਕਰੇ ਬਖਿਆਨ, ਕਹੂੰ ਮੂਨ ਧਾਰੀ ਲਾਵੇ ਧਿਆਨ,

ਭਰ ਮੀ ਆ ਨਾਨਾ ਰੂਪ ਜੰਗ ਸੁਭਾਗੀ ਦਿਖਾਵੈ ਜੋ ਪ੍ਰਭ ਭਗਤ ਤਿਵੈ ਨਚਾਵੈ ਜਦ ਸੁਭਾਵੈ ਸੋਈ ਹੋਏ ਨਾਨਕ ਦੂਜਾ ਵਰਨਾ ਕੋਏ ਕਾਮ ਉਸਾ ਸੰਗਤਿ ਸੇ ਉਹ ਪਾਵੇ ਉਸ ਸਥਾਨ ਤੇ ਬਹੁਰ ਨਾਵੈ ਅੰਤਰ ਹੋਏ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਾਸ ਉਸ ਸਥਾਨ ਕਾ ਨਹੀਂ ਵਿਨਾਸ਼ ਮਨ ਤਨ ਨਾਮ ਰਤੇ ਕਰੰਗ ਸਦਾ ਬਸੇ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ ਕੇ ਸੰਗ ਜਿਉ ਜਲ ਮੈਂ ਜਲ ਆਏ ਖਟਾਨਾ ਤਿਉ ਜੋਤੀ ਸੰਗ ਜੋਤ ਸਮਾਨਾ ਮਿਟ ਗਏ ਗਵਨ ਪਾਏ ਬਿਸਰਾਮ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਕਹਿ ਸਾਧੂ ਕੁਰਬਾਨ ਸਲੋਕ ਸੁਖੀ ਬਸੇ ਮਸਕੀਨੀ ਆਪ ਨਵਾਰ ਤਲੇ ਬੜੇ ਬੜੇ ਅਹੰਕਾਰੀਆ ਨਾਨ ਗਰਬ ਗਲੇ ਅਸ਼ਟਪਤੀ ਜਿਸਕੇ ਅੰਦਰ ਰਾਜ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋਨਰ ਕਪਾਤੀ ਹੋਵਤ ਸੋਮਾਨ ਜੋ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਜੋ ਬਨਵੰਤ ਸੋਵਤ ਵਿਸ਼ਟਾ ਕਾ ਜੰਤ ਆਪਸ ਕੋ ਕਰਮੰਤ ਕਹਾਵੈ ਜਨਮ ਮਰੇ ਵੋ ਜੋਨ ਪਰਮਾਵੈ ਧਨ ਭੂਮ ਕਾ ਜੋ ਕਰੇ ਗੁਮਾਨ ਸੋ ਮੂਰਖ ਅੰਧਾ ਗਿਆਨ ਕਰ ਕਿਰਪਾ ਇਸਕੇ ਹਿਰਦੇ ਗਰੀਬੀ ਬਸਾਵੈ ਨਾਨਕੀ ਹਾਂ ਮੁਕਤਾ ਕਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਤਨਵੰਤਾ ਹੋਏ ਕਰ ਗਰਵਾਵੈ ਤ੍ਰਿਣ ਸਮਾਨ ਕਾ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਵੈ ਬਹੁ ਲਸ਼ਕਰ ਮਾਨੋ ਕੁਪਰ ਕਰੇ ਆਸ ਪਰ ਭੀਤਰ ਤਾਂ ਕਾ ਹੋਏ ਵਿਨਾਸ਼ ਸਭ ਤੇ ਆਪ ਜਾਣੇ ਬਲਵੰਤ ਖਿਨ ਮੈਂ ਹੋਏ ਜਾਏ ਪਸਮੰਤ ਕਿਸੇ ਨਾ ਵਧਿਆ ਅਹੰਕਾਰੀ ਧਰਮ ਰਾਇ ਦਿਸ ਕਰੇ ਖੁਆਰੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਜਾਂ ਕਾ ਮਿਟਿਆ ਅਭਿਮਾਨ ਸੋ ਜਨ ਨਾਨਕ ਦਰ ਗਏ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕੋੜ ਕਰਮ ਕਰੇ ਹਮ ਧਾਰੇ ਸਰਮ ਪਾਵੇ ਸਕਰੇ ਬਿਰਥਾਰੇ ਅਨਕ ਤਪੱਸਿਆ ਕਰੇ ਹੰਕਾਰ ਨਰਕ ਸੁਰਗ ਫਿਰ ਫਿਰੇ ਅਵਤਾਰ ਅਨਕ ਯਤਨ ਕਰਾ ਤੁਮ ਨਿੰਦਰਾਵੇ ਹਰ ਦਰਗੇ ਕੋ ਕੈਸੇ ਗਾਵੇ ਆਪਸ ਕਹੋ ਜੋ ਭਰਾ ਕਹਾਵੈ ਤਿਸੇ ਭਲਾਈ ਨਿਕਟ ਨਾ ਆਵੈ ਸਰਬ ਕਿਰਿਆ ਜਾ ਕਮਨ ਹੋਏ ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਦਾ ਗਿੰਦਨ ਵਲ ਸੋਏ ਜਾਵ ਲਾਗੇ ਜਾਣੈ ਮੁਝ ਤੇ ਕਾਸ਼ ਹੋਏ ਤਾਂ ਆਪਸ ਕਹੋ ਸੁਗਨਾ ਹੀ ਕੋਈ ਜਾਵੇ ਜਾਣੇ ਮੈਂ ਕਿਛ ਕਰਤਾ ਤਬ ਲਗ ਗਰਬ ਜੋਨ ਮੈਂ ਫਿਰਤਾ ਜਬ ਧਾਰੇ ਕੋ ਬੈਰੀ ਮੀਤ ਤਬ ਲਗਨੇ ਚਲਣਾ ਇੰਚੀਤ ਜਬ ਲਗ ਮੋਹ ਮੰਗ ਸੰਗਮਾਏ ਤਬ ਲਗ ਧਰਮ ਰਾਏ ਦੇਸ ਜਾਏ ਪ੍ਰਭ ਕਿਰਪਾ ਦੇ ਬੰਧਨ ਟੁੱਟੈ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕੋ ਛੁੱਟੈ ਸਹਿਸ ਖਟੇ ਲਖ ਕੋਠ ਤਾਵੈ ਤ੍ਰਿਪਤ ਨ ਆਵੈ ਮਾਇਆ ਪਾਛੈ ਪਾਵੈ ਅਨਕ ਭੋਗ ਵਿਖਿਆ ਕੇ ਕਰੈ ਨੈ ਤ੍ਰਿਪਤਾਵੇ ਖੱਬ ਖੱਬ ਮਰੇ ਬਿਨਾਂ ਸੰਤੋਖ ਨਹੀਂ ਕੋ ਰਾਜੈ ਸੁਪਨ ਮਨੋਰਥ ਬਿਰਥੇ ਸਭ ਕਾਜੈ ਨਾਮ ਰੰਗ ਸਰਬ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪਣੇ ਭਾਗ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਕਰਨ ਕਰਾਮ ਨੇ ਆਪੇ ਆਪ ਸਸਦਾ ਨਾਨ ਕਰ ਜਾਪ ਕਰਨ ਕਰਾਮ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਹੋਏ ਇਸਕੇ ਹਾਥ ਕਾਮ ਵਿਚਾਰ ਜੈਸੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ ਕਰੇ ਤੈਸਾ ਹੋਏ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਰਵ ਸੋਏ ਜੁਸ਼ਕਿਨੋ ਸੋ ਆਪਣੇ ਰੰਗ ਸਭ ਤੋਂ ਦੂਰ ਸਭ ਕੇ ਸੰਗ ਬੂਝੇ ਦੇਖਿਆ ਕਰੇ ਵਿਵੇਕ ਆਪੇ ਕਾਪੇ ਅਨੇਕ ਮਰਣਾ ਮਨ ਸੇ ਆਵੇ ਨਾ ਜਾਏ ਨਾਨਕ ਸਦੀ ਰਹਿ ਸਮਾਏ ਆਪ ਦਿਸੇ ਸਮਝੇ ਆਪ ਆਪ ਰਚਿਆ ਸਭ ਕਾ ਸਾਥ ਆਪੇ ਕਿ ਆਪ ਗਿਨੋ ਆਪ ਵਿਸਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਾਸ਼ ਸੁਕਾਉ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਉਸਦੇ ਭਿੰਨ ਕਹੋ ਕਿਸ਼ੋਏ ਥਾਂ ਤੁਰੰਤਰ ਕਹਿ ਸੋਏ ਆਪਣੇ ਚਲਤ ਆਵ ਕਰਨੇ ਹਾਰ ਕੋ ਜੋ ਕਰੇ ਨੰਗੇ ਆਵਾਰ ਮਨ ਮੇ ਆ ਮਨ ਆਪਣੇ ਮਾਹੇ ਨਾਨਕੀ ਮਨ ਕਹਿ ਨਾ ਜਾਏ ਸਤ ਸਤ ਸਤ ਪ੍ਰਭ ਸੁਆਮੀ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਕਿਨੇ ਵਖਿਆ ਨੀ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸੱਚ ਸਭ ਕੀ ਨਾ ਕੋੜ ਮਦੇ ਕਿਨ ਬਿਰਲੇ ਚੀਨਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਭਲਾ ਤੇਰਾ ਰੂਪ ਆਦਿ ਸੁੰਦਰਿਆ ਪਾਰ ਅਨੂਪ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਨਿਰਮਲ ਤੇਰੀ ਬਾਣੀ ਕਰਕੜ ਸੁਣੀ ਸਰਵਨ ਬਖਿਆਣੀ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪਵਿੱਤਰ ਪੁਨੀਤ ਨਾਮ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਮਨ ਪ੍ਰੀਤ ਸਲੋਕ ਸੰਤ ਸਰਨ ਜੋ ਜਨ ਪਰੇ ਸੂਜਨ ਉਦਰਨ ਹਾਰ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਨਾਨਕਾ ਬੌਰ ਬੌਰ ਅਵਤਾਰ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨੇ ਹਾਰ ਜਾ ਘਟਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਜਮਤੇ ਨੇ ਛੁੱਟਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੁੱਖ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨਰਕ ਮੈਂ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਮਤ ਹੋਏ ਮਲੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸੋਭਾ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਹੱਥੇ ਕੋ ਰੱਖਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਥਾਨ ਭ੍ਰਸ਼ਟ ਹੋਏ ਸੰਤ ਕਿਰਪਾਲ ਕਿਰਪਾ ਜੇ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਸੰਗ ਨਿੰਦਕ ਪੀ ਤਰੇ ਸੰਤਨ ਕੇ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਖ ਪਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਕਾਗ ਜੋ ਲਾਵੇ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਰਬ ਜੋਨ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਗਤ ਜੋਨ ਕਿਰਮਾਏ ਸੰਤਨ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਮੈਂ ਜਲੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਛ ਹਲੈ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁਖੀ ਤੇ ਸਭ ਜਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਦੁੱਖ ਨੀਚ ਨੀਚਾ ਸੰਤ ਦੁਖੀ ਕਾ ਥਾਂ ਕੋ ਨਾ ਹੀ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਇਹ ਭੀਗਤ ਪਾਏ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾਤ ਤਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਹੰਟਕ ਨਾ ਪਾਈ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਮਹਾ ਤਿਆਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਾਰਾ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਰਾਜ ਤੇ ਹੀਨ ਸੰਤ ਕਾ ਨਿੰਦਕ ਦੁਖੀ ਯਾਰ ਦੀਨ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਿਰਬ ਰੋਗ ਸੰਤ ਕੇ ਨਿੰਦਕ ਕੋ ਸਦਾ ਵਿਜੋਗ ਸੰਤ ਕੀ ਨਿੰਦਾ ਦੁਖ ਮੈਂ ਦੁਖ ਨਾਨਕ ਸੰਤ ਭਾਵੇ ਤਾਂ ਉਸਕਾ ਪੀ ਹੋਏ ਮੋਖ
संत का दुखी सदा पवित, संत का दुखी किसी का नहीं मित, संत का दुखी को डान लग गए, संत का दुखी को सब त्याग, संत का दुखी महाअहंकारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत का दुखी सदा भिखारी, संत के जन्म में बड़े, संत को दुख सुख तेरे, संत का दुखी को ना इंठा ना, संत पावता लय मिला, संत का दुखी आदि बीते टूटे, संत का दुखी के देखा न पहुंचे, संत के दुखी को ध्यान प्रमाइए, संत का दुखी उजड़ पाइए, संत का दुखी अंतर ते थोथा, जो सांस बिना मृत किलो था, संत के दुखी की जड़ किश नाही, आपने बीज आप ही खाए, संत के दुखी को अवर न रखन हार, संत पैवे तो लै उबार, संत का दुखी इो बिल लाए, जो जाल भी हूं न मछली तड़ फड़ाए, संत का दुखी भूखा ने राजाए, जो पावक इतर ने तलापै, संत का दुखी छुटे इकेला, जो बवाड़ तिलखे तमाहे दुहेला, संत का दुखी धर्म ते रहत, संत का दुखी सदमे त्या कैत, किरत निंदक का तुर ही पया, नानु जो से पावे सोई थ्या, संत का दुखी बिगड़ रूप होए जाए, संत के दुखी को दर गए मेरे से जाए, संत का दुखी सदा सह काई है, संत का दुखी ना मरे ना जीवाई है, संत के दुखी की पूजे ना आसा, संत का दुखी उठ चले निराशा, संत का दुख न दृष्टि कोय, जैसा पावे तैसा कोई होए, पया किरत न मिटे कोय, नानक जाना सच्चा सोए, सब कर सके ओ करने हार, सदा सदा तिसको नमस्कार, प्रभु की उस्तत करो दिन रात, तिसे त्याहो सास ग्रास, सब कश वरते तिसका किया, जैसा करे तैसा को थिया, अपना खेल आव करने हार, दूसर कौन कहे विचार, जिसनो कृपा करे से अपन नाम दे, बड़भागी नानक जन से श्लोक, तजो सियान पसुर जनो सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रख हो, नानक दुख भरम पौ जाए, अष्टपदी मानु की टेक बिरती सब जान, देवन कहो एक भगवान, जिसका दिए रहे अकाए, बहु नदशन ला गया, मारे राखे कौ आप, मानुख का कृष्णाई हाथ, जिसका हुक्म भूल सुख हो, जिसका नाम रा कंठ परोए, सिमर सिमर सिमर प्रभ सोए, नानक बिघन न लागे कोई, उस्त मन में कर निरंकार, कर मन मेरे सत व्यवहार, निर्मल रसना अमृत पियो, सदा सुहेला कर रहे जियो, नैनो पीख ठाकुर का रंग, सा संग बिन से सब संग, चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटे पाप जपिए हर बिंद, कर हर कर्म सर्वन हर कथा, हर दरगह नानकी उजल मथा, बड़भागी ते जन जग माहे, सदा सदा हर के गुण गाहे, राम नाम जो करे विचार, से तनवंत गनी संसार, मन तन मुख बोल है हर मुखी, सदा सदा जानू ते सुखी, एको एक एक पहचान, इत उतकी ओ सो जी जान, नाम संग इसके मन मानिया, नानक तन निरंजन जानिया, गुर प्रसाद अपन आप सुजै, तिसकी जानो तृष्णा बुझै, साध संग हर हर रस कैत, सर्व रोग ते ओ हर जन रैत, अनदिन कीर्तन केवल बखियान, गृहस्थ में सोई निर्वाण, एक ऊपर जिस जन की आसा, तिसकी कटिया जम की फासा, पार ब्रह्म की जिस मन भूख, नानक तिसे न लागे दुख, जिसको हर प्रभ मंच ते आवे, सो सन सुहेला नहीं डुलावे, जिस प्रभ अपना कृपा करे, सो सेवक कहो किसते डरे, जैसा सा तैसा दृष्टाया, अपने कार्य अपने कार्य में आप समाया, सोधत सोधत सोधत सीजिया, गुर प्रसाद तद सा बूझिया, जब देखो तब सब कुछ मूल, नानक सो सुखम सोई स्थूल, न किस जन्मे न किस मरे, अपन चलते आप ही करे, आमन जामन दृष्ट अन दृष्ट, आज्ञाकारी धारी सब सृष्ट, आपे आप सगल में आप, अनक जुगत रहिथा भूथा, अविनाशी नाई किस गंड, धारण तारे ब्रह्मांड, अलख अभेव पुरख प्रताप, आप जपाए ता नानक जाप, जिन प्रभ जाता सुशोभावंत, सगल संसार उदर तिन मंत, प्रभ के सेवक सगल उदाहरण, प्रभ के सेवक दुख विसारण, आपे मेरे लय कृपाल, गुरु का शब्द जप है नहाल, उनकी सेवा सोई लागे, विष्णु कृपा करे बड़े भागे, नाम जपत पावे विश्राम, नानक तिन पुरख कहो उत्तम कर मान, जो कुछ करे सो प्रभु का रंग, सदा सदा बसे हर संग,
सह सुभाई होवे सो होए, करने हार पिछाण है सोए, प्रभु का किया जन्म मीट लगाना, जैसा सा तैसा दृष्टाना। जिस दी उपजे समाहे समाए, ओए सुखनदान उनु बने आए, आप क्यों आप दीनो मां, नानक प्रभु जाने को जान सलोक, सर्व कला भरपूर प्रभु बिरथा जान नहार, जा कै सिमरन उदरी है नानक तसबलहार अष्टपदी। टूटी गंडन हार गोपाल, सर्ब जिया पे व्रतपाल, सगर की चिंता जिस मन माहे, तिस ते व्रता कोई नाहे, रे मन मेरे सदा हजाब, अविनाशी प्रभु आपे आप, आपन किया कछु न होए, जे सुपना ने लोचा कोई, तिस बै नाही तेरे केश काम, गत नानक जापे हर नाम, रूपवंत होए नाही मुआए, प्रभु की जो सलखट सोहे, तरवंता होए क्या को गर्भ है, जा सब कोई दसका दिया दरब है, अत सूरा जे को कहावे, प्रभु की कला बिना कहता आवे, जे को होए बै दातार, तिस दिन हार जाना गावार, जिस गुर प्रसाद टूटे हो रोग, नानक सोजन सदा अरोग, जो मंदिर को थमे थमन, ते गुर का शब्द मने अस्तमन, जो पाखान नाव चढ़ तरे, प्राणी गोचरण लग तरस तरे, जो अंधकार दीपक प्रकाश, गुर दर्शन देख मनोवे विगास, जो महा उद्यान में मार्ग पावे, तो साधु संग मिल जोत प्रगटावे, तिन संतन की बाशों तूर, नानक की हर लोचा पूर, मन मूर्ख काहे बिल लाई है, पुरब लिखे का लिखिया पाई है, दू सुख प्रभु देव नहार, अवर त्याग तू तिसे चितार, जो कश करे सोई सुख मान, भूला काहे फिरे अजान, कौन बस्त आई तेरा संग, लपट रहे और असलो भी पतंग, राम नाम जप हिरदे माहे, नानक पासेती कर जाए, जिस वखर को लैन तू आया, राम नाम संतन कर पाया, ता जब मान लो मन मोल, राम नाम हिरदे वै तोल, लाद खेल संत संग चाल, प्रत्याग बिखिया जिंजाल, तन तन गए सब गोए, मुख उजल हर दर गए सोए, हो वपार बला वपार है, नानक तंग सत बलहार है, चरण साध कह तोए तोए पियो, और प्रसाद को अपना जियो, साध के दूर करो इशनान, साध ऊपर जाइए कुर्बान, साध सेवा उड़ भागी पाइए, साध संगार कीर्तन गाइए, अनक बिघन ते साधु राखे, हर गुण गाए अमृत रस चाखे, उड़ गई संत है दर आया, सर्व सुख नानक ते पाया, मृतक को जीवन हार, भूखे को देवते आधार, सर्वन दान जग दृष्टि माहे, गुरु लिखे का लेना पाए, सब के दिसकाओ करने जोग, तिस बन दूसर हुआ न होगा, जप जन सदा सदा दिन रहनी, सब ते ऊच निर्मल करनी, कर कृपा जिसको नाम दिया, नानक सो जन निर्मल थिया, जाके मन गुर की प्रतीत, तजने आवे हर प्रभु चीत, पगड पग सुनिए ते हो लोए, जाके हृदय को होए, सच करनी सहायता की रहत, सच हृदय सदमुख कहत, सच दृढ़ साचा आकार, सच वर्ते साचा पासार, पार ब्रह्म यूं सच कर जाता, नानक सो यूं सच समाता, सलोक रूप ना देख न रंग, के क्षेत्र गुण ते प्रभे नद से बुझाए नानका, जिस होवे सो प्रसन्न, अष्टपदी अपरासी ब्राह्मण में राख, मानो की तो प्रीत त्याग, तिस्ते परे नाही किश कोई, सर्व निरंतर को सोए, आपे बिना आपे दाना, गहर गंभीर गहीर सुजाना, पार ब्रह्म परमेश्वर गोविंद, कृपा निधान दयाल बख्शान सा, तेरे की चरणी पाओ, नानक मन एहो अनराओ, मनसा पूर्ण सरना जोग, जो कर पाया सोई होग, हरन परन जाका नेत्र फोर, तिसका मंत्र न जाने हो, रण ध्रुव मंगल सत जाकर, सर्व तोक सुनिए करता के, राज में राज, योग में जोगी, तप में तपीसर, ग्रस्त में भोगी, त्याय त्याय भगत सुख पाया, नानक तिस पुरख का किने अंत न पाया, जा की लीला की मित ना है, सकल देव हारे अवगाहे, पिता का जन्म के जाने पूत, सकल परोई अपने सूत, सुमत ज्ञान ध्यान जन दे, जनदास नाम ते आवे से, ते गुण में जाको प्रमाए, प्रमाए जन्म मरे फिर आवे जाए, ऊच नीत के स्थान, जैसा जनावे तैसा नानक जान, नाना रूप नाना जाके रंग, नाना पे करे करंग, नाना विद की नो विस्तार, प्रभु नासी अहंकार,
नाना जल्द करे खिन माए पूरे पूर्ण सब ठाए नाना बिनत कर बनत बनाई अपनी कीमत आपे पाई सब घर दिसके सब दिसके ठाओ जप जप जीवै नान घर नाओ नाम के तारे सगले जंत नाम के तारे खंड ब्रह्मांड नाम के तारे सिमरत वेद पुराण नाम के तारे सुन ज्ञान ध्यान नाम के तारे आकाश पाताल नाम के तारे सगला आकार नाम के तारे पुरिया सब भवन नाम के संग उदर सुन श्रवन कर कृपा सा अपने नाम लाए नानक चौथे पद में सुजन नानक चौथे पद में

विचार करते कि मितना जाना किया नानक उसे पावे सो वर्तिया जिसमन विषम भय विषमाद जिन बूझा से आया स्वाद प्रभु के रंग राजन रहे गुरु के वचन पदार्थ लहे वे दाते दो काटनहार जन के संग तरे संसार जन का सेवक से वोड भागी जन के संग एक लेव लागी गुण गोविंद कीर्तन जन गावे गुरु प्रसाद नानक पर पावे श्लोक आद सच जुगाद सच है पे सच नानकोसी पे सच अष्टपदी चरण सत सत प्रसनहार पूजा सत सत सेवदार दर्शन सत सत पेखनहार नाम सत सत ध्यावन हार नाम सत सत ध्यावन हार आप सत सत सवधारी आपे गुणकारी शब्द सत सत प्रभ भगता सुरत सत सत जस सुनता बुजनहार को सत सब होए नानक सत सत प्रभ सोए सत स्वरूप हृदय जन माने आ करन करावन तिन मूर पछाने आ जा कर दे विश्वास प्रभ आया तत् ज्ञान समान प्रगटाया भय तिन पोहे बसाना जिस ते उपजल समाए समान ना वस्त माए ले वस्त कढाई ता को भिर न कह न जाई बूजा बूजनहार विवेक नारायण मिले नानक एक ठाकुर का सेवक आज्ञाकारी ठाकुर का सेवक सदा पुजारी ठाकुर का सेवक मन प्रतीत ठाकुर का सेवक इंद्र मरीत ठाकुर का सेवक जाने संग प्रभु का सेवक नाम का रंग सेवक प्रभ पालनहारा सेवकी राख निरंकार सो सेवक दया प्रभु धारे नानक सो सेवक सा सा समारे अपने जन का पर्दा ढाके अपने सेवकी सर पर राखे अपने दास को दे वडाई अपने सेवक को नाम जपाई अपने सेवक आपात राखे तांगे गत में तो कोई ना लाख है प्रभु के सेवक का को ना पहुंचे प्रभु के सेवक ऊंचे ऊंचे जो प्रभु अपनी सेवा लाया नानक सो सेवक दल से प्रगटाया निकी कीरी मैं कर राखा है पसम करे लश्कर कोट राखा है जिसका सास ना काटते आप तांको राख देकर हाथ मानस जतन करतब पांत तिसके करते बिरते जात मारे ना राखे वरना कोए सर्व जिया का राखा सोए काहे सोच करे रे प्राणी जप नानक प्रभ अलख वडाणी बारं बार बार प्रभ जपिए पी अमृत हो मन तन त्रपिए नाम रतन जिन गुरमुख पाया तिस किश अवर नाही दृष्टाया नाम तन नाम हो रूप रंग नामो सुख हर नाम कसंग नाम रस जो जान त्रिपताने मन तन नामे नाम समाने ऊठत बैठत सोवत नाम मंत नाम उठत बैठ सोवत नाम कहो नानक जन के सब काम बोलो जा जे बादन रात प्रभ अपने जन कीनी दात करे भगतात्म कह चाय प्रभ अपने सो रह समाए जो हुआ हो सो जान प्रभ अपने का हुकुम पछान इसकी महिमा कौन बखानो जिसका गुण का एक न जानो आठ पैर प्रभ से हजूरे मंग कौ नांग से इन पूरे माने मेरे तेन की ओट माने मेरे तेन की ओट ले मंतन अपना तिन जन दे जिन जान अपना प्रभु पुछाता सोजन सर्व थोका दाता जिसके सरन सर्व सुख पावे जिसके दर्शा पाव मिटावे अवर जानम सगली शाड़ तिशन की तू सेवा लाग आमन जान होवी तेरा नाम तिशन के पूजो सर पैरा श्लोक सतगुरु जन जाने सतगुरु तिसका नाओ तिसका संग से कुदरे नान घर गुण गाओ अष्टपति सतगुरु सिख की करे प्रतिपाल सेवक गुरु सदा दयाल सिख की गुरु दुरमत मल ही रहे गुरु बचनी हर नाम उच्च रहे सतगुरु सिख के बंधन काट है गुरु का सिख विकार ते हट है सतगुरु सिखो नाम धन दे गुरु का सिख बुढ़भागी सतगुरु सिख हलत पल सवार नानक सतगुरु सिखो जी नाम समारे गुरु के ग्रह सेवक जो रहे गुरु की आज्ञा मन में सहे आप को कर कश न जनावे हर हर नाम रिधि सत्य आवे मन बेचे सतगुरु के पास ते सेवक के कारजास सेवा कर दो इन्हें कामी सकोल प्राप्त स्वामी अपनी कृपा से आप करे नानक सो सेवक गुरु की मत ले बीस विश्व गुरु का मन मान सो सेवक परमेश्वर की गदियान सो सतगुरु श्रदे हर नानक बार गुरु को बल जाओ सर्वदान जी का दाता आठ पैर पार ब्रह्म रंगराता ब्रह्म जन जन में पार ब्रह्म एक आपने किश परम सह सियान बलया न जाइये नानक ऐसा गुरु बड़भागी पाई ऐसा पल दर्शन पेख पुनीता पर सचन रंगत नरमारीता भेड़ संग राम गुण रवे पार ब्रह्म की दरगे गावे
सुन कर भजन करने करने मन संतो का दंपति आने पूरा करो अखा जाओ अखा हो जा का मंत्र दृष्टि।

लाए अष्टपदी जाचक जन जाचै प्रभदान कर कृपा देवो हर नाम साध जना की मांगो तूर पार ब्रह्म मेरी सरदा पूर सदा सदा प्रभ के गुण गावो सास सास प्रभ तुम्हें त्यावो चरण कमल स्यों लागे प्रीत भगत करो प्रभ की नित नीत एक ओट एको आधार नानक मांगे नाम प्रभ सार प्रभ की दृष्ट मां सुख होए हरस पावे बिरला कोई जन चाख्या से जन त्रिपताने पूर्ण पुरख नहीं डोलाने सो भर भरे प्रेमरा सरंग उपजे चाओ साधका संग परे शरण आन सब त्याग अंतर प्रगास अंदिन लिव लाग बड़भागी जपया प्रभ सोए नानक नाम रते सुख होए सेवक की मनसा पूरी पई सतगुर ते निर्मल मत लई जन को प्रभ होए दयाल सेवकी नु सदा निहाल बंधन काड़ मुगदन भया जन्म मरण दुख ब्रह्म गया इश पुन्नी सरदा सब पूरी रव रहया सत्संग हजूरी जिसका सा तिन लिया मिलाए नानक भगती नाम समाए सो क्यों बिसरै जे काल ना पाने सो क्यों बिसरै जे किया जाने सो क्यों बिसरै जिन सब किश दिया सो क्यों बिसरै जे जीवन जिया सो क्यों बिसरै जे अग्न में राखै गुरप्रसाद को बिरला लाखै सो को बिसरै जे बिखते काढ जन्म जन्म का टूटा गाढ है गुरपुरि तते हे बुझाया प्रभ अपना नानक जन त्याया साजन संत करो एहु काम त्याग जपो हर नाम सिमर सिमर सिमर सुख पाव हो आप जपो अवरै नाम जपावो भगत पाए तरिये संसार बिन भगती तन होसी शार सर्व कल्याण सुख निद नाम बूढ़त जात पाए विश्राम सगल दुखा होत नास नानक नाम जपो गुंतास उपजी प्रीत प्रेम रस चाओ मंत्र अंतर एही सुवाओ नेत्रों पेग दर सुख होए मन बिकसै साध चरण धोए भगत जना कै मंत्र रंग बिरला को पावे संग एक बस दीजे करमया गुर प्रसाद नाम जप लया ताकि उपमा कही न जाए नानक रहा सर्व समाए प्रभक संदीन दयाल भगत वशसा कृपाल अनाथ नाथ गोविंद गोपाल सर्व कटा करत प्रतपाल आदि पुरु कारण करतार भगजना के प्राण आधार जो जो जपे सो होय पुनीत भगत पाए लावे मन हीत हम निर्गुनी यार नीच अजान नानक तुमरे सरन पुरख भगवान सर्व बैकुंठ मुक्त मोख पाए एक निम करके गुण गाए अनक राज भोग बड़े आए हर के नाम की कथा मन पाए बहु भोजन का प्रसंगीत रसना जपते हर हर नीत फली सो करनी शोभा तनवंत हृदय बसे पूर्ण गुरमंत साध संग प्रभ दिहो निवास सर्व सुख नानक प्रगास श्लोक सार गुण

आपे ही फिर जाप अष्टपदी जब आकार हुकाशना दृष्टिता पापन तब कहते होता जब तारी अपन सुन समाद तब बैर ब्रो के संकमात जब इसका वर्ण चिन्ह जापत तब हरक सोग कहो किसे व्याप्त जब अपन आप अपार ब्रह्म तब मुह कहा कि सोभित परम अपन के लिए आवर्ती जनाने करने हार न दूजा जब होवत प्रभ केवल तनी तब बंद मुक्त कहो किसको गनी जब एक कह रगमा पार तब नरक सुरुग कहो कौन अवतार जब निर्गुण प्रभ सह सपाए तब शिव शक्त कहो कि तिठाए जब आपे आप अपनी जो तरे तब कवन निडर कवन कत डरे अपन चलते आप करने हार नानक ठाकुर रघुमा अम्मा अपार नानक ठाकुर अगुआ पार अविनाशी सुख अपने आसन त जन्म मरण को कहा बनासन जब पूर्ण करता अपना सोए तब जम की त्रास कहो के सोए जब अभिगत गोचर प्रभ एका तब कित गुप्त कस पूछत लेखा जब नान अंजन गोचर गा दे तब कौन छुटे कौन बंदन बा दे अपना आप ही चर जा नानक अपन रूप आप ही ऊपर जा जय निर्मल पुरख पुरख पत होता तय बिन मैल कहो क्या तोता जय नरंजन का निर्वाण ते कौन को मान कौन अभिमान जय स्वरूप केवल जगदीश तय शर शिता लगत को कीस जय जो स्वरूपी जो संग समावे तय किसे भू कौन तृप्तावे करण करावन करने हार नान करते का नाह सुमार जब अपनी सोभा आपन संग बनाई तब कवन माए बाप मित्र सुत पाई जय सर्व कला पे प्रवीण तय वेद कतेव कहां कोचीन जब अपन आप आबुर तारे तो सगन अप सगन कहां विचार है जय अपन ऊंचा अपन आप नेरा तय कौन ठाकुर कौन कहिए चेरा बिस्मर बिस्मर बिस्माद नानक अपनी गल जानो आप जय अशल अशेद अभेद समाया ऊहा किसे ब्याव तमाया आप को आप देस ते गुण का ना ही प्रवेश जय कह एक एक भगवंता तय कौन अचिंत किस लाग चिंता जय अपन आप पतियारा तय कौन कथे कौन सुनने हारा वो बंतु जिते उच्चा नानक आप को आपे पहुचा जय आप रचो ब्रपंचया कार ते गुण मैं किनो विस्तार पापुण ते भय कहावत को नरको स्वर्ग बंशावत आल जाल माया जंजाल हमें मोह परम पै पार दुख सुख मान अपमान अनक प्रकार कियो बखियान अपन खिराब कर देखे खेल संकोच है तो नानक एक है जय अभिगत भगत आप जय पसरे पासार संत प्रताप दुहपा का पे धनी उनकी शोभा बनी आपे कौत करे अनंत चोज आपे रस भोग निरजोग जिस भाव सापर ना लावे जिस भाव खेल खिलावे बेशुमार अथाह अगणित अतोल ज्यों बुलावो त्यों नानक दास बोले।

कहे दृष्टार अष्टपदी आप कथे आप सुने हार आपे का विस्तार जंस भागता सृष्टि उपाय अपने पाणी लै समाए तुमते पिन नहीं कुछ होए अपन सोसा जगत परोए जां गोबराब जीव आ बुझाए सच नाम सोजन पाए सो समदर्शी तत् का बेता नानक सगल सृष्टि का जेता जी जंदर सतां के हाथ दीन दयाला नाथ को नाथ इस राखे कोई न मारे सो मुआ सोनो विसारे तीता जबर कहां को जाए सब श्री निरंजन राय जी की जुग जाक सभा हाथ अंतर बाहर जानो साथ गुण निंदान बिनते अपार नानक दास दा बलहार पूर्ण पूर है दयाल सब उपर होवत कृपाल अपने कर्तव्य जाने आप अंतर जामी रहो व्याप प्रत पाल जी अन बो पहात जो जो रचे उस तिस त्यात जिस पावे तिस लै मिलाई भगत करे हर के गुण गाई मन अंतर विश्वास कर मानिया करण हार नानक एक जानिया जान लागा रे कहना है तिसकी आस न बिरथी जाए शिव कहो सेवा बने आई हुकुम बुझ परम पद पाए इस ते ऊपर नहीं विचार जाके मन मस्य निरंकार बंधन तोर भय निर्वैर अंधन पूजे गुर के पैर ए लोग सुखिए परलोक सुहेले नानक हर प्रभ आपे मेले साध संगमिल करो आनंद गुण गावा हो प्र परमानंद राम नाम तत् करो विचार दुर्लभ देख करो उदार अमृत बचन हर के गुण गाओ प्राण तन का ही स्वभाव आठ पै प्राप्य खू नेरा मिटै गान मन से अंधेरा सुन बदे सिरदे बसावो मन श्री नानक पल पाओ हलत पल दोले हो सवार राम नाम अंतर उतार पूरे गुर की पूरी दिखिया जिस मन बस सत्य सार परीखिया मंत्र नाम जपो लिवलाए दुख दर्द बनते पौ जाए सच व्यापार करो व्यापारी दरगन बह के तुम्हारी कटे रखो मन वाहे नानक बोल ना वह जाए तेते दूर कां को जाए उबरे रख न आरते आए दिन पौ जा पैस कर पौ मिटे प्रभु कृपा ते प्राणी छुट्टा इस प्रभु राके सुनाए दुख ना जो तुम हो सुख चिंता जाए मिटे अहंकार इत जन को कोई ना पहुंचन हार सिरे ऊपर ठाडा गुरु सूरा नानक ताके कार्य पूरा मत पूरी अमृत जाकी दृष्ट दर्शन पेखत उदरत सृष्ट चरण कमल जाके अनूप सफल दर्शन सुंदर हर रूप धन सेवा सेवक प्रवान अंतर जामी पुरुख प्रधान जिस मन बस सोत नहाल ताके निटना आपतकाल अमर पै अमरा पद पाया सा संग नान कर त्याया सलोक ज्ञान अंजन गुर दिया अज्ञान अंधेर विनाश हर कृपा ते संत भेटिया नानक मन प्रगास अष्टपदी संसंग अंत प्रभ डीठा नाम प्रभु का लागा मीठा सगल सिमिगरी एक घट माए अनकरंगना ना दृष्टाए नौन दमृत प्रभु नौन दमृत प्रभु का नाम देही मस्का विश्राम सुन समाधान है तैनात कह न जाइ आचार्य बिस्मात देखा जिसे आप दिखाए नांग तेजन सोजी पाए सो अंदर सो बाहर अनंत कर कर व्याप रहा भगवंत तरन माया आकाश पयाल सब लोग पूर्ण प्रतिपाल बंतर पर्वत है पार ब्रह्म जैसी जगह तैसा कर्म पौन पानी बै संतर माहि चार कुंट दे दिसे समाहि तिस्ते भिन नहीं कोठाओ गुरु प्रसाद नानक सुख पाओ वेद पुराण सिमरत मैं देख ससियर सूर नखत्र मैं एक बाणी प्रभ की सब को बोले आप अडोल न कबहू डोले सर्व कला कर खेल खेल मोल न पाइए गुण है अमोल सर्व ज्योत मैं जाकी ज्योत तार रहे हो स्वामी ओत पोत गुर प्रसाद परम का नास नानक तिन मैं इहो विसास संत जना का पेखन सब ब्रह्म संत जना के हृदय सब धर्म संत जना सुन सब बचन सर्व्यापी राम संग्रचन जिन जाता तिसकी रहत सत बचन साधु सब कहत जो जो हुए सोई सुख मान करन करावन हार प्रभ जान अंतर बसे बाहर पियो ही नानक दर्शन देख समोही आप सत किया सब सत जिस प्रभ ते सगली उत्पत से भावे ता करे विस्तार जिस भावे ता एक अंकार अनकला लखी न जाए जिस भावे सलै मिलाए
ਕਵਨ ਨਿਕਟ ਕਵਨ ਕਹੀਏ ਦੂਰ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪ ਭਰਪੂਰ ਅੰਤਰਗਤ ਜਿਸੇ ਆਪ ਜਨ ਆਇਨਾਂਗ ਜਿਨ ਆਪ ਬੁਝਾਏ ਸਰਬ ਭੂਤ ਆ ਵਰਤਾਰਾ ਸਰਬ ਨੈਨ ਆ ਪੇਖਨਹਾਰਾ ਸਗਲ ਸਮਗਰੀ ਜਾਂ ਕਾ ਤਨਾ ਆਪ ਭਲਾ ਕਰ ਤੂੰ ਤਾਂ ਤੇ ਨੀਕੀ ਆਪੇ ਜਾਣੇ ਆਪਣੇ ਜੀ ਕੀ ਆਪ ਸਾਜ ਧਾਰੀ ਸਭ ਸਾਚ ਹੋ ਤੂੰ ਬੋਧ ਆਪਣਾ ਸੰਗਰਾਜ ਤਾਂ ਕਿ ਗਦਮਿਤ ਕਹੀ ਨਾ ਜਾਏ ਦੂਸਰ ਹੋਏ ਤਾਂ ਸੋ ਜੀ ਪਾਏ ਤੇ ਇਸ ਕਾ ਕੀ ਆਸਾ ਪ੍ਰਵਾਨ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ ਨਾਨਕ ਕਿਹੋ ਜਾਣ ਜੋ ਜਾਣੈ ਤਿਸ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਜੋ ਜਾਣੈ ਤੇ ਸਦਾ ਸੁਖ ਹੋਏ ਆਪ ਮਿਲਾਏ ਲੈ ਪ੍ਰਭ ਸੋਏ ਓ ਤਨਵੰਤ ਕੁਲਵੰਤ ਪਤਵੰਤ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਜਿਸ ਹਿਰਦੈ ਭਗਵੰਤ ਧਨ ਧਨ ਧਨ ਜਨ ਆਇਆ ਜਿਸ ਪ੍ਰਸਾਦ ਸਭ ਜਗਤ ਰਾਇਆ ਜਨ ਆਵਨ ਕਾ ਇਹ ਸਵਾਉ ਜਨ ਕੈ ਸੰਗ ਚਿਤੇ ਆਵੈ ਨਾਉ ਆਪ ਮੁਕਤ ਮੁਕਤ ਕਰੈ ਸੰਸਾਰ ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਜਨ ਕਉ ਸਦਾ ਨਮਸਕਾਰ ਸਲੋਕ

सतगुरु का खड़ग संजो हर भगत है जित काल कंटक मार विडारे सतगुरु का रखन हारा हर आप है सतगुरु का पिछे हर सब बारे जो मंदा चितवै पूरे सतगुरु का सो आप पावन हार मारे एह गल होवै हर दरगह सच्चे की जन नानक अगम विचारे पौड़ी सच सुत्या जिनी आराध्या जा उठे ता सच चवे से विरले जुग मह जानी है जो गुरमुख सच रवे हौ बले हारी तिन कौ जे अंदन सच लवे जिन मन तन सच्चा भाव दासे सच्ची दरगह गवे जन नानक बोला सच नाम सच सच्चा सदा नवे सलोक महला चौथा क्या सवना क्या जागना गुरमुख ते प्रवान जिना सास गिरास न विसरै से पूरे पुरख प्रधान करमी सतगुर पाई है अन दिन लगै ध्यान तिनकी संगत मिल रहा दरगह पाई मान सौंदे वाहो वाहो उच्चरह उठदे पी वाहो करेन नानक ते मुख उजले जे नित उठ संभालेन महला चौथा सतगुर सेवी है अपना पाई है नाम अपार भौजल डुबद्या कढ लै हर दात करे दातार धन धन से साह है जे नाम करह व्यापार वन जारे सिख आवदे शब्द लगावन हार जन नानक तिन को कृपा पही तिन सेव्या सिरजनहार पौड़ी सच सच्चे के जन भगत है सच सच्चा जिनी आराध्या जिन गुरमुख को खोज टंडोलिया तिन अंदर हो ही सच लादेया सच साहिब सच जिनी सेव्या काल कंटक मार तिनी साध्या सच सच्चा सब दू वड्डा है सच सेवन से सचर लादेया सच सच्चे नो साबास है सच सच्चा सेव फलादेया सलोक महला चौथा मनमुख प्राणी मुगदा है नामहीन परमाए बिन गुरमनुआ ना टिकाए फिर जूनी पाए हर प्रब आप दयाल होहे ता सतगुर मिलियाए जन नानक नाम सलाहे तू जन्म मरण दुख जाए महला चौथा गुरसाला ही अपना बहुविध रंग सुभाए सतगुर सेती मन रत्ता रखिया बणत बनाए जेहवा सालाहे न रजई हर प्रीतम चित लाए नानक नावा की मन भुख है मन तृप्ता हर रस खाए पौड़ी सच सच्चा कुदरत जानी है दिन राती जिन बनाई है सो सच सलाही सदा सदा सच सच्चे किया वड्याई है सालाही सच सलाह सच सच कीमत किना न पाई आ जा मिलिया पूरा सतगुरु ता हाजर नदरी आई आ सच गुरमुख जिनी सलाहे आ तिना भुखा सब गवाई आ सलोक महला चौथा मैं मन तन खोज खोजे दिया सो प्रभ लद्दा लोड़ विष्ट गुरु मैं पाया जिन हर प्रभ दिता जोड़ महला तीजा माया धारी अताना बोला शब्द न सुनई बहरोल कचोला गुरमुख जापै शब्द लिवलाए हर नाम सुन मने हर नाम समाए जो ते सुपावै सो करे कराया नानक वजदा जंत वजाया पौड़ी तू करता सब किछ जानदा जो जिया अंदर वरता तू करता आप गणत है सब जग विच गणत है सब कीता तेरा वरतदा सब तेरी बनता तू घट घट एक वरतदा सच साहिब चलता है सतगुर नौ मिले सो हर मिले नाही किसै परता सलोक महला चौथा
एहो मनुआ दृढ़ कर रखी गुरमुख लाइया चेता क्यों सास गिरास विसारी बहद्या उठद्या नेता।

ज्योत की जात जात की ज्योति तित लागे कंचुआ फल मोती कवन सो कर जो निरपो कही है पो पज जाए अबे हो रही है रहाओ तट तीर्थ ने मन पति आए चार चार रहे उर जाए पाप पन दो एक समान निज कर पारस तजो गुणान कबीर निर्गुण नाम न रोस तिस परचाय परच रहो इस गौड़ी कबीर जी जो जन परमित पर मन जाना बातन ही बैकुंठ समाना ना जाना बिखुंठ कहा ही जान जान सब कहता ही रहो कहन कहावन नैपति आई है तो मन माने जाते हमें जई है जब लग मन बिखुंठ की आस तब लग होए नहीं चरण निवास कहो कबीर एक कही इनका है साध संगत बिखुंठे आए गौड़ी कबीर जी उपजे निपजे निपज समाई नैनो देखत ये जग जाई लाज न मरो कहो कर मेरा अंत की वार नहीं कछ तेरा रहाओ अंग जतन कर काया पाली मरती वार अगन संग जाली चोआ चंदन मर्दन अंगा सो तन जले काट के संगा कहो कबीर सुनो रे गुनिया बिनसे गो रूप देखे सब दुनिया गौड़ी कबीर जी अवर मुए क्या सो करीजे तो कीजे जो अपन जीजे मैं ना मरू मर भो संसारा अब मुए मिलो है जिया बनहारा रहाओ याय देही परमल मह कंदा ता सुख बिसरे परमानंदा कुंटा एक पंच निरपनहारी टूटी लाज परे मनहारी टूटी लाज परे मत हारी कहो कबीर एक बुद्ध बिचारी ना हो कुटा ना पनहारी गौड़ी कबीर जी असावर जंगम कीट पतंगा अनक जन्म किए बोरंगा ऐसे कर हम बहुत बसाए जब हम राम घर हुए आए रहाओ जोगी जति तपी ब्रह्मचारी कबू राजा छत्रपत कबू भिखारी साकत मरे संत सब जीवे राम रसैन रसना पीवे कहो कबीर प्रभ कृपा कीजे हार परे अब पूरा दीजे गौड़ी कबीर जी की नाल लाए लिखिया महला पंजवा ऐसो चर्च देखो कबीर दद के भोले बिरोले नीर राओ हरी गुरी गधा चरे नेतुट हासे ही गे मरे माता पैंसा मुआ जाए कुद कुद चरे रसा तल पाए कहो कबीर प्रगट पई खेड लेले को चूगे नित भेड राम रसन मत प्रगटी आई कहो कबीर गुर सोजी पाई गौड़ी कबीर जी पंच पदे ज्यों जल छोड़ बार प्यो मीना पूरब जन्म हो तो पका कीना अब को राम कवन गत मोरी तजी ले बनारस मत पई थोरी रहाओ सगल जन्म से पुरी गवाया मरती बार मगर उठाया बहुत वर्ष तप किया काशी मरन पिया मगर की वासी काशी मगर साम बिचारी ओछी भगत कैसे उतरस पारी को गुर गाज सेव सब को जाने मुआ कबीर रामत श्री रामे गौड़ी कबीर जी चोआ चंदन मर्दन अंगा सो तन जले काट के संगा इस तन तन की कवन बढ़ाई तरन परे उरवार न जाई तन जले काट के संगा इस तन के कवन बढ़ाई तरन परे उरवार न जाई रहाओ रात ये सोवे दिन करे काम खिन खिन ले न हर को नाम हाथ ता डोर मुख खायो तंबोर मरती वार कस बाध्यो चोर गुरमत रस रस हर गुण गावे रामे राम रामत सुख पावे कृपा करके नाम दरड़ाई हर हर वास सुगंध बसाई कहत कबीर चेतरे अंदा सत राम झूठा सब धंदा गौड़ी कबीर जी तिप दे चार तुके जपते उल्ट पे है राम दुख बिन से सो कियो बिसराम बेरी बैरी उल्ट पे है मीता साकत उल्ट सुजन पे चीता अब मोए सर्व कुशल कर मानिया शांत पई जब गोविंद जानिया रहाओ
तन में होती कोट अपाद ओट पई सुख सहज समाद आप पछाने आपे आप रोग न व्यापे तीनो ताप आप मन ओट सनातन हुआ तप जान्या जब जीवत मुआ कौ कबीर सुख सहज समावो

सा सा पन होए जग को खाई, हम देखत जिन सब जग लूटिया, कौ कबीर मैं राम कह छुटिया। कौड़ी कबीर जी, दे मुहार लगाम पहरावो, सगलता जीन गगन दौरावो, अपने विचार सवारी की जय, सहज के पावड़े पग धर लीजे रहाओ। चल रे बखौंट तुझे ले तारो, हिचते प्रेम की कह चाबक मारो, कह कबीर भले सवारा, बेद कतेब ते रहे निरारा। गौड़ी कबीर जी, जे मुख पांचो अमृत खाए, ते मुख देखत लूकट लाए, ये दुख राम राय काटो मेरा, अगन दहे अर गर्भ सेरा रहाओ। काया भगूति बैबद पाती, को जारे को गढ़ ले माटी, कह कबीर हर चरण दिखावो, पाचे ते जम क्यों ना पठावो। गौड़ी कबीर जी, आपे पावक आपे पवना, जारे खसम त राखे कवना, राम जप तो तन जर की न जाए, राम नाम चित रहा समाए रहाओ। जा को जरे काए हुए हान, नट बट खेले सारग पान, कहो कबीर अखर दोए पाख, होएगा खसम ता लेगा राख। गौड़ी कबीर जी दुप दे, ना मैं जोग ध्यान चित लाया, बिन बराग ना छूट समाया, कैसे जीवन हुए हमारा, जब ना हुए राम नाम अदारा रहाओ। को कबीर को जो असमान, राम समाना देखो आन। गौड़ी कबीर जी, जे सिर रच रच बाधत पाग, सो सिर चुंच सवारे काग, इस तन तन को क्या गर रैया, राम नाम का ही ना दड़िया रहाओ। कहत कबीर सुनो मन मेरे, यही अवाल होए गो तेरे, गौड़ी ग्वारे री के पदे। 35 राह गौड़ी ग्वारे री अष्टपदी कबीर जी की, एक ओंकार सतगुर प्रसाद, सुख मांगत दुख आगे आवे, सो सुख हमें न मांगिया पावे, बिख्या जे सुरत सुख आसा, कैसे हुई है राजा राम निवासा रहाओ। इस सुख ते सेव ब्रह्म डराना, सो सुख हम साच कर जाना, सन कादक नारद मन सेखा, तिन पी तन में मन नहीं पेखा, इस मन को कोई खोजो पाई, तन छूटे मन कहा समाई, गुर प्रसादी जय देओ नामा, भगत के प्रेम इन ही है जाना। इस मन को नहीं आवन जाना, जिसका परम गया तिन साच पछाणा, इस मन को रूप न देखिया काई, हुक्मे होया हुक्म बुझ समाई, इस मन का कोई जाने पेओ, ए मन लीन पे सुख देओ, जियो ए कर सगल शरीरा, जिस मन को रव रहे कवीरा। गौड़ी ग्वारेरी, एनस एक नाम जो जागे, केतक सैध पे लिव लागे रहाओ, साधक सैध सगल मुन हारे, एक नाम क्लिप तरतारे, जो हर हरे सोए न आना, कह कबीर राम नाम पछाना। गौड़ी पी सोरठ पी, रे जी निल ज लाज तो नाही, हर तज कत कहू के जाही रहाओ, जा को ठाकर ऊंचा होई, सो जन पर कर जात न सोही, सो सैव रहा भरपूर, सदा रंग संग नाही हर दूर, कवला चरण सरन है जाके, को जन का नाही करता के, सब कोई कहे जास की बाता, सो सम्राथ निज पत है दाता, कहे कबीर पूर्ण जग सोई, जाके हृदय अवर न कोई, कौन को पूत पिता को काको, कौन मरे को देख संतापो, हर ठग जाको ठगौरी लाई, हर के ब्यो कैसे जियो मेरी माई रहाओ, कौन को परख कौन की नारी, ये तत लियो सीर बिचारी, कह कबीर ठग स्यो मन मान्या, कई ठगौरी ठग पहचानिया, अमोको पै राजा राम सहाई, जन्म मरण कट परम गत पाई रहाओ, साधु संगत दी ओर लाए, पंज दूते लियो छडाए, अमृत नाम जपो जप जपना, अमोल दास कर लीनो अपना, सतगुर कीनो पर उपकार, काढ लीन सागर संसार, चरण कमर स्यों लागी प्रीत, गोविंद बसे नित नित चीत, माया तावत बुझे अंगियार,
मन संतोख नाम आधार। जल थल पूर रहे प्रभ स्वामी, जत पेखूं तत अंतर जामी। अपनी भगत आप ही दरड़ाई, पूर्व लिखत मिलिया मेरे पाई। जिस कृपा करे तिस पूरन साज, कबीर को स्वामी गरीब निवाज। जल है सूतक थल है सूतक, सूतक हो पत होई। जन्मे सूतक मुए फन सूतक, सूतक पर जब बिगोई। कोरे पंडिया कौन पविता, ऐसा ज्ञान जपो मेरे मीता रहाओ। नैनो सूतक बैनो सूतक, सूतक सरमणी होई। उठत बैठ सूतक लागे, सूतक पर सोई। पासन की वेद सब को जाने, छूटन की एक कोई। कह कबीर राम हृदय विचारे, सूतक ने न होई गौड़ी। झगरा एक नवेरो राम, जब लो अपने जन सौ काम रहाओ। ए मन बड़ा के साजा सो मन मान्या, राम बड़ा के रामे जान्या। ब्रह्म बड़ा के जा सो पाया, वेद बड़ा के जहां ते आया। कह कबीर हो पिया उदास, तीर्थ बड़ा के हर का दास। राह गोड़ी चेती देखो पाई, घान की आई आंदी। सबे डाणी परम की टाटी, रहे न माया बांधी रहाओ। दो चित्ते की दो तुन ग्रानी, मोहे बड़े ब्लेडा टूटा। तिसना चान भरी तर पर, दुर्मत पांडा फूटा। आंदी पाछे जो जल वरके, तै तेरा जन पीना, तै तेरा जन पीना। कह कबीर मन पिया प्रगासा, उदे पान जब चीना। गौड़ी चेती एक ओंकार सतगुर प्रसाद, हर जन सुनो न हर गुण गावे। बातन ही असमान गिरावे, ऐसे लोगन स्यो क्या कहिए। जो प्रभ किए भगत ते बाज, तिन ते सदा डराने रही है। राहो आपना दे चुरु पर पानी, ते निंदक जे गंगा आनी। बैठत उठत कुटिलता चाले, आप गए और नो काले। छाड़ कु चर्चा न जाने, ब्रह्मा हूं को क्यों न माने। आप गए और नो खोवे, आगल गए मंदिर में सोवे। अवरन हास्त आप हर काने, तिन को देख कबीर ले जाने। राह गौड़ी ब्रागण कबीर जी, एक ओंकार सतगुर प्रसाद। जीव तो पितर न माने को, मूरे मुए सदार सिराद कराई। पितर भी बपरे को क्यों बावे, कौआ कुकर खाई। मोक्यो कुशल बतावो कोई, कुशल कुशल करते जग बिन से। कुशल भी कैसे होई रहाओ, माटी के कर देव देवी देवी देवा। ते सागे जियो देही, ऐसे पितर तुम्हारे कहिए। अपन के न ले सर जियो काटे, निर्जियो पूजे अंतकाल को पारी। राम नाम की गत नहीं जानी, पैडू बे संसारी। देवी देवा पूजे डोले, पार ब्रह्म नहीं जाना। कहत कबीर अकुल अकुल नहीं चेत्या, बिख्या स्यों लपटाना। गौड़ी जीवत मरे मरे फन जीवे, ऐसे सुन समाया। अंजन माए निरंजन रही है, बोड़ न पव जल पाया। मेरे राम ऐसा खीर बलोई है, गुरमत मनुआ आस्तर रखो। इन बेद अमृत पियोई है, रहाओ। गुर के बाण बजर कल शेदी, प्रगटिया पद परगासा। सख्त देर जेवडी परम चूका, नेचल सिव करवासा। तीन दिन जा बाणे तनक चढ़ाई है, ये जग बेदिया पाई। देरस बूढ़ी पवन चुलावे, डोर रही लिवलाई। उनमन मनुआ सुन समाना, दुबदा दुमत भागी। कहो कबीर अनुभव एक देखिया, राम नाम लिव लागी। गौड़ी बैरागण तिप दे, उलटत पवन चक्र खट पेदे। सुरत सुन अनरागी, आवे न जाए मरे न जीवे। तास खोज बैरागी, मेरे मन मन ही उल्ट समाना। गुर प्रसाद अकल पई अवरे, नातर था बेगाना रहो। निवरे दूर दूर फन निवरे, जिन जैसा कर मानिया। अलोती का कै जैसे पिया बरेडा, जिन पिया तिन जानिया। तेरी निर्गुण कथा काहे स्यों कहिए, ऐसा कोई बवेकी। कहो कबीर जिन दिया पलीता, तिन जै तैसी चल देखी। गौड़ी तै पावस सहंदत उपने शैया, तो उत्पत पर लो नाही। जीवन मेरत ना दुख सुख व्यापे, सुन समा दो तै नाही।
सहज की कत कता है नरारी, तुल तो नहीं जडे जाए ना मुकाती, हलूकी लगे न पारी रहो, अर्द अर्द दो नाही, रात दिन सदै नाही, जल नहीं पवन भावक पुन नाही, सतगुर था समाई, आगम गोचर रहे निरंतर, गुर कृपा ते लही है, कहो कबीर वाल जाओ गुर अपने, सत संगत मिल रही है, गौड़ी पाप बैल विसाए, पवन पूंजी परगास्यो, तिसना गुण भरी घट पीतर, इन विद ठंड बसात्यो, बिसाओ ऐसा नान नायक राम हमारा, सगल संसार कियो बनजारा, रहाओ काम क्रोध दोए पै जगाती, मन तरंग पटवारा, पंच तत् मिल दान वेरे, ठांडा उतरियो पारा, कहत कबीर सुनो रे संतो, अब ऐसी बनाई, काटी चढ़त बैल एक था का, चलो गुण छिटकाई, गौड़ी पंच पदा पेवकड़े दिन चार, सोहरे जाना अंधा लोक न जानी, मूरख ए आना, कह को डड़िया बादे तन खड़ी, पाहू कर आए मकलाओ आए रहो, ओ जोदी से कूड़ी कौन लाज भारी, लाज खड़ी सो टूट पड़ी उठ चली पनहारी, साहेब होए दयाल कृपा करे, अपना कार्य सवारे, ता सुहागण जानिए गुर शब्द विचारे, खित की बांधी साफरे देखो बेचारी, इसनू क्या क्या आखी है क्या करे विचारी, पई नरासी उठ चली चित बंद न तीरा, हर की चरनी लाग रो पज सरन कबीरा, गौड़ी जोगी कहन जोग पल मीठा वना दूजा पाई, रुंडत मुंडत एक शब्दी एक सिद्ध पाई, हर बिन परम पुलाने अंदा जा पे जाओ आप छुटक छुटकावन, ते वांदे भौ फंदा रहाओ, जे ते उपजी तही समानी ए विद विसरी तभी, पंडित गुणी सोर हम दाते ए कहे बड़ हम ही, जिसे बजाए सोई बुझे बिन बुझे क्यों कही है, सतगुरु मिले अंधेरा चुके इन विद मानक लही है, तजबावे दाहिने बेकारा हर पद हर कर कही है, को कबीर गूंगे गुड़ खाया पूछे ते क्या कही है, रा गोड़ी पूर्वी कबीर जी एक ओंकार सतगुर प्रसाद, जय कछ आहा तहा कछ नाही, पंच तत तै नाही, इड़ा पिंगला सुखण बंदे एव गण कत जाही, तागा टूटा गगन बिनस गया तेरा बोड कहा समाई, ए संसा मोको अंधन ब्यादे मोको को ना कहे समझाई, रहो वर पंड पेंड तै नाही, चरचन हार तै नाही, जोड़न हारे सदा तीता, एक ही एक समाही, जोड़ी जुड़े ना तोड़ी टूटे, जब लग हुए बिनासी, का को ठाकर का को सेव को काहू कह जासी, कहो कबीर लिव लाग रही है जहां बसे दिन राती, हुआ का मरम हुई मर जाने हो तो सदा विनासी, गौड़ी सुरत समृद हो कनी मुंदा परमित बार खिंता, सुन गुफा में आसन बैसन कल्प विवर्जित फंता, मेरे राजन मैं बैरागी जोगी मर्त न सोग बेयोगी, रहो खंड ब्रह्मंड मैं सिंजी मेरा बटुआ, सब जग पसमा तारी, ताड़ी लागी तिरपल पलटिए छूटे हुए पसारी, मन पवन दोए तुम्बा करी है जुग जुग सारद साजी, तेर पे तांती छूट सनाई अनद किंगुरी बाजी, सुन मन मगन पे है पूरे माया डोल न लागी, कहो कबीर ता को पुनर्म जन्म नहीं खेल गे हो बैरागी, गौड़ी गज नव गज दस गज किस पुरिया एक तनाई, साठ सूतनम खंड बातर पाठ लगो अधकाई, गई बनावन माहो कर छोड़िए जाए जलाहो, रहाओ गजी न मिनिए तोल न तुलिए पाचन सिर डाई, जो कर पाचन बेग न पावे चगर करे कर हाई, दिनगी बैठ खसम की वरकस ए वेला कत आई, छूटे कुंडे पीगे पुरिया चलो जलाओ रसाई, शोशी नली तंत नहीं निकसे नदर नहीं उर जाई, छोड़ पसारी यारो बपरी कहो कबीर समझाई, गौड़ी एक जोत एका मिली खिम्पा होए मोए, जितकड़ राम न उपजे फूट मरे जन सोए, सावल सुंदर रामैया मेरा मन लागा तोहे, रहो साध मिले सिद्ध पाई है के जो के भोग, तू मिल कार्ज उपजे राम नाम संजोग,
लोग जाने यो गीत है ये तो ब्रह्म विचार ज्यो कंस ही उपदेश होए मानस मरती वार कोई गावे को सुने हर नामा चित लाए कौ कबीर संसार नहीं अंत परम गत पाए गौड़ी जेते जतन करते डूबे पव सागर नहीं तारियो रे कर्म धर्म करते बहु संयम अंग बुद्ध मन जारियो रे सास ग्रास को दातो ठाकर सो क्यों मनो बसारियो रे हीरा लाल मोल जन्म है कोडी बदले हारियो रे राव तिसना त्रिखा भूख भ्रम लागी हिरदे नाए बिचारियो रे उन मत मान हिरियो मन माही गुर का शब्द न तारियो रे स्वाद लो तिंद्री रस प्रेरियो मद रस लैत विकारियो रे करम भाग संतन संगाने काष्ट लो उदारियो रे तावत जोन जन्म परम था के अब दुख कर हम हारियो रे कह कबीर गुर मिल तुम्हारा सब प्रेम भगत निस्तारियो रे गौड़ी काल भूत की हसनी मन बोरा रे चलत रे जो जगदीश काम स्वाद गच गज वस परे मन बोरा रे अंकस सहो शीस देखे बाछर राच समझ मन बोरा रे निरप हुए न हर भजे मन बोरा रे गयो न राम जहाज राव मरकट मुष्टि नाज की मन बोरा रे लीनी हाथ पसार छुटन को सहसा भरया मन बोरा रे नाचियो कर कर वार ज्यो नलनी सूटा गयो मन बोरा रे माया यो व्यवहार जैसा रंग समका मन बोरा रे त्यों पसरियो पसार नावन को तीर्थ कने मन बोरा रे पूजन को बो देव कोक भी छुटने मन बोरा रे छुटन हर की सेव गौड़ी अगण दे पवन मगने तस्कर नेर न आवे राम नाम तन करी सजोनी सो तन कंत ही न जावे सो तन कत ही न जावे हमरा तन माधो गोविंद धरनी तारे सार तन कही है जो सुख प्रभु गोविंद की सेवा सो सुख राज न लही है राव इस तन कारण शिव सनकादक खोजत पे उदासी मन मकंद जेवा नारायण परे न जम की फासी निज तन ज्ञान भक्त गुरदीनी सा तास समत मन लागा जल थंब थंब मन तावत असव तावत भरम भरम बंधन पौ पागा कह कबीर मदन के माते हृदय देख विचारी तुम कर लाख कोट हस हस्ती हम कर एक मजार मरारी गौड़ी ज्यो कप के कर्म मुष्ट चनन की लुभ न त्याग दियो जो जो कर्म किए लालच स्यो ते फिर गिर उपरियो भगत बिन व्यर्थे जन्म गयो साध संगत भगवान भजन बिन कही न सच क्रहियो राओ ज्यों ध्यान पा कुसुम पर फुलत किने न कराओ लयो तैसे परमत अनेक जोन में फिर फिर काल हयो या तन जोवन अरसोदारा पेखन को जो दयो तेन ही माए अटक जोर जे इंद्री प्रेर लयो ओद अनल तन तेन को मंदर चो दिस नाट ठयो कह कबीर पै सागर तन को मैं सतगर ओट लयो गोड़ी पानी मेला माटी गोरी इस माटी की पुत्री जोरी मैं ना ही किछाए न मोरा तन तन सब रस गोविंद तोरा रहाओ इस माटी में पवन समाया झूठा परपंच जोर चलाया किनू लाख पांच की जोरी अंत की बार गगरिया फोरी कहे कबीर एक नीव सारी खिन में बेंस जाए हंकारी गौड़ी राम जपो जी ऐसे ऐसे ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे दीन दयाल भरोसे तेरे सब परवार चढ़ाया बेड़े रहाओ जांत सुभावे ता हुक्म मनावे ऐस बेड़े को पार लंगावे गुर प्रसाद ऐसी बुद्ध समानी चूक गई फिर आवन जानी कहो कबीर भज सारंग पानी और वार पार सा वेखो दानी गौड़ी नौवा जोन चाड़ जो लग मैं आयो लागत पवन खसम बिसरायो जीरा हर के गुणा गाओ और हाओ गर्भ जोन में उर्द तप करता तो जठर अगन में रहता लख चौरासी जोन परम आयो अबके छुटके ठोर न ठायो कहो कबीर पै सारंग पानी आब दिसे जात न जानी गौड़ी पूर्वी स्वर्ग वासना बाचिए टरिये नरक निवास होना है सो होई है मने न कीजे आस रमैया गुण गाइए
ताते पाइए पर मने दान रहाओ। क्या जप क्या तप संजमो, क्या वर्त क्या स्नान, जब लग जुगत न जानिए पाओ भगत भगवान। सांपे देखन हर किए, विपत देखना रोए, ज्यो सांपे त्यों विपत है, बिद ने रचिया सोए। कह कबीर अब जानिया संतन हृदय मुजार, सेवक सो सेवा भले जय कट बसे मुरार। गौड़ी रे मन तेरो कोई नहीं, खिंच ले जिन पार, बिरख बसेरो पंख को तैसो ए संसार। राम रस पिया रे ये रस बिसर गए सब और रहाओ। और मुए क्या रोइए, जो आपा थिर न रहाए, जो पिए सो बिनस है दुख करो वे बुलाए। जे की उपजी तै रची पीपत मर्दन लाग, कह कबीर चिंता चेत्या राम बैसर राम सिमर बैराग। रा गौड़ी पंथ निहारे कामणी, लोचन परी ले उलासा उसासा, और ना पीजे पग ना किसे हर दर्शन की आसा। उडो ना कागा कारे, बेगम लीजे अपने राम प्यारे रहाओ। कह कबीर जीवन पद कारण हर की पत करीजे, एक आधार नामन रैन रसना राम रवीजे। रा गौड़ी ग्यारवा आस पास कन तुरसी का बिरबा, माज बना रस गाऊ रे, उनका स्वरूप देख मोए ग्वारन, मोक्यो छोड़न आओ न जाऊ रे। तोहे चरण मन लागो सारंग तर, सो मिले जो बड़ भागो रहाओ। वृंदावन वृंदावन मन हरन मनोर, कृष्ण चरावत गाऊ रे, जा का ठाकर तू ही सारंग तर, मोए कबीरा नाओ रे। गौड़ी पूर्वी बेपल वास्तर केते है पैरे, क्या बन बदे वासा, कहाँ प्या नर देवा तोके, क्या जल बोरे हो गया था। जी रे जाएगा मैं जाना, अवगत समझे आना, जात जात देखूं बोर न पेखो, संग माया लपटाना रहाओ। ज्ञानी त्यानी बो उपदेसी, ये जग सगलो तंदा, कह कबीरिक राम नाम बिना या जग माया अंधा। गौड़ी मन रे छाड़ो परम, प्रगट हुए नाचो ये माया के पांडे, सुर के सनमुख रने डर पे सती के सांझे पांडे। डगमग छाड़ रे मन बोरा, अब तो जरे मरे सिद्ध पाई है, लीनो हाथ सुंदौरा रहाओ। काम क्रोध माया के लीने, ए विदे जगत बिगुता, कह कबीर राजा राम ना छोड़ू, सगल ऊंच ते ऊंचा। गौड़ी फरमान तेरा सिरे सिर ऊपर, फिर करन साकत करत विचार, तू ही दरिया तू ही करिया, तुझे ते निस्तार, बंदे बंदगी इक त्यार, सैव रुस्त रो के प्यार हो। नाम तेरा दार, मेरा ज्यो फूल जाइए नार, कह कबीर गुलाम घर का जियाए पावे मार। गौड़ी लख चौरासी जी जोन में परमत नंद, बोता को भगत हित अवतार लियो है, पाग बडो बपरा कोरो, तुम जो कहत हो नंद को नंदन, नंद सो नंदन का कोरे, तन का दसो दसनाही, ताबे नंद कहा थोरे। रहाओ संकट नहीं परे, जो नहीं आवे नाम रंजन जाको रे, कबीर को स्वामी ऐसो ठाकर, जाके माई न बापो रे। गौड़ी निंदो निंदो मोक्यो लोग निंदो, निंदा जन को खरी प्यारी, निंदा बाप निंदा महतारी रहो। निंदा होए ते बेखुंट जाइए, नाम पदार्थ मने बसाइए, हृदय सद जो निंदा होए, हमरे कपरे निंदक तोए। निंदा करे सो हमरा मीत, निंदक माए हमारा चीत, निंदक सो जो निंदा करे, हमरा जीवन निंदक लोरे। निंदा हमरी प्रेम प्यार, निंदा हमरा करे उधार, जन कबीर को निंदा सार, निंदक डूबा हम उतरे पार। राजा राम तू ऐसा निरपाओ, तरन तरन राम राया रहाओ। जब लाग होते तब तुम नाही, अब तुम हो हम नाही, अब हम तुम एक पे हैं, एक है देखत मन पतिया ही। जब बद होती तब बल कैसा, अब बद बल न खटाई, कह कबीर बुद्ध हले मेरी, बुद्ध कुंजी को बल प्राण कर रखे, करते वार न खाई। लाई रहो अब मन जागत रहो रे पाई, गाफल होए के पतियारा, चेत चेत चत हो रहो, तौले प्रगास हो जारा। नौकर देख जो कामन भूली, बस्तन उप न पाई,
ਕਹਿਤ ਕਬੀਰ ਨਵੇਂ ਕਰ ਮੂਸੇ ਦੱਸ ਵੇ ਤਤ ਸਮਾਈ ਗੌੜੀ ਮਾਈ ਮੂਹੇ ਵਰਨਾ ਜਾਣਿਓ ਆਨਾ ਸਿਵ ਸਨਕਾਦ ਜਾਸ ਗੁਣ ਗਾਵੇ ਦਾਸ ਬਸੇ ਮੁਰੇ ਪ੍ਰਾਣਾ ਨਾ ਰਹਾਓ ਹਿਰਦੇ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਗਿਆਨ ਗਮਤ ਗਗਨ ਮੰਡਲ ਮੈਂ ਧਿਆਨਾ ਨਾ ਵਿਖੇ ਰੋਗ ਪੈ ਬੰਧਨ ਭਾਗੇ ਮਨ ਨਿਜ ਘਰ ਸੁਖ ਸਜਾਨਾ ਏਕ ਸਮਤ ਰਤ ਜਾਣਿਆ ਮਾਨ ਪ੍ਰਭ ਦੂਸਰ ਮਨੇ ਨਾਨਾ ਚੰਦਨ ਬਾਸ ਭੈ ਮਨ ਬਾਸਨ ਤਿਆ ਘਟਿਓ ਅਭਿਮਨਾਨਾ ਜੋ ਜਨ ਗਾਏ ਧਿਆਏ ਜਸ ਠਾਕਰ ਤਾਸ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਬਾਨਾਨਾ ਤੈ ਬਡ ਭਾਗ ਬਸਿਓ ਮਨ ਜਾ ਕੇ ਕਰਮ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮਦਨਾਨਾ ਘਾਟ ਸਖਤ ਸਹਿਬ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸਿਓ ਏਕੈ ਏਕ ਸਮਾਨਾਨਾ ਕਾਹੇ ਕਬੀਰ ਗੁਰ ਭੇਟ ਮਾ ਸੁਖ ਪਰਮਤ ਰੇ ਮਨ ਮਾਨਾਨਾ ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਪੂਰਵੀ ਬਾਬ ਨਖਰੀ ਕਬੀਰ ਜੀਓ ਏਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਬਾਬਾ ਨਖਰ ਲੋਕ ਤ੍ਰੈ ਸਭ ਕੁਛ ਇਨੀ ਮਾਏ ਅੱਖਰ ਖਿਰ ਜਾਏ ਗਏ ਉਹ ਅੱਖਰ ਇਨ ਮੈਂ ਨਾਏ ਜਹਾਂ ਬੋਲ ਤੈ ਅਚਰ ਆਵਾ ਜੈ ਬੋਲ ਤੈ ਮਨ ਨਾ ਰਹਾਵਾ ਬੋਲ ਬੋਲ ਮਦ ਹੈ ਸੋਈ ਜਸੋ ਹੈ ਤਸ ਲਖੀ ਨ ਕੋਈ ਅਲੇ ਲਹੋ ਤੋ ਕਿਆ ਕਹੋ ਕੋ ਤਾ ਕੋ ਪਕਾਰ ਬਟਕ ਬੀਜ ਮੈਂ ਰਵ ਰਿਹੋ ਜਾ ਕੋ ਤੀਨ ਲੋਕ ਵਿਸਤਾਰ ਅਲੇ ਅਲਹਾਂਤਾ ਭੇਦ ਚੈ ਕਛ ਕਛ ਪਾਇਓ ਭੇਦ ਉਲਟ ਭੇਦ ਮਨ ਬੇਦਿਓ ਪਾਇਓ ਭੰਗ ਛੇਦ ਤੁਰਕ ਤਰੀਕਤ ਜਾਨੀਏ ਹਿੰਦੂ ਵੇਦ ਪੁਰਾਣ ਮਨ ਸੁਭਜਾਵਣ ਕਰਨੇ ਕਛੁਕ ਪੜੀਏ ਗਿਆਨ ਓਂਕਾਰ ਆਦਮੈ ਜਾਨਾ ਲਿਖਰ ਭੇਟੇ ਤਾਇਨ ਮਾਨਾ ਓਂਕਾਰ ਲਿਖੇ ਜੇ ਕੋਈ ਸੋਈ ਲਖ ਮੇਟਣਾ ਨਾ ਹੋਈ ਕੱਕਾ ਕਰਨ ਕਮਲ ਮੈਂ ਪਾਵਾਂ ਸੱਸ ਗਰਾ ਸੰਭ ਨਹੀਂ ਆਵਾਂ ਹਰ ਜੇ ਤਿਹਾ ਕੁਸਮ ਰਸ ਪਾਵਾਂ ਕਹਿ ਕਾ ਸਮਝਾਵਾਂ ਖੱਖਾ ਵੇ ਖੋੜ ਮਨਾਵਾਂ ਖੋੜੇ ਚਾਣਾ ਦੇ ਦੇ ਸਤਾਵਾਂ ਖਸਮੇ ਜਾਣ ਕੇ ਮਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੋ ਹੋਏ ਨਿਖਿਓ ਅਖੇ ਪਦਲੇ ਗੱਗਾ ਗੁਰ ਕੇ ਬਚਨ ਪਛਾਤਾ ਦੂਜੀ ਵਾਤ ਨਾ ਧਰੀ ਕਾਨਾ ਰੇ ਭਿਅੰਗਮ ਕਹਿਤ ਨ ਜਾਈ ਅਗੇ ਗਏ ਗਗਨ ਨਰਹਾਈ ਕੱਗਾ ਘੱਟ ਘੱਟ ਨਿਵਸੇ ਸੋਈ ਘੱਟ ਫੂਟੇ ਘੱਟ ਕਵੇ ਨ ਹੋਈ ਤਾਂ ਘੱਟ ਮਾਹੇ ਘਾਟਨ ਜੋ ਪਾਵਾਂ ਸੋ ਘੱਟ ਛਾੜ ਅਬ ਘੱਟ ਕੱਤ ਧਾਵਾਂ ਜੰਝਾ ਨਿਗਰੇ ਸਿਉਂ ਕਰ ਨਿਰਵਾਰੋ ਸੰਦੇ ਨਾਹੀਂ ਦੇਖ ਨਾ ਭਾਜੀਏ ਪਰਮ ਸਿਆਣ ਪਈਏ ਚੱਚਾ ਚਰਿਤ ਚਿੱਤਰ ਹੈ ਭਾਰੀ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰੇ ਚੇਤੋ ਚਿਤਕਾਰੀ ਚਿੱਤਰ ਬਚਿੱਤਰੇ ਅਬਚੇਰਾ ਤਾਂ ਚਿੱਤਰੇ ਚਿਤਰਾਖ ਚਤੇਰਾ ਛੱਛਾ ਛੇ ਛਤਰਪਤ ਪਾਸਾ ਛੱਕ ਕੇ ਨਾ ਰਹੋ ਛੱਡ ਕੇ ਨਾ ਆਸਾ ਰੇ ਮਨ ਮੈਂ ਤੋ ਛਿਨ ਛਿਨ ਸਮਝਾਵਾਂ ਤਾਏ ਛੱਡ ਆਪ ਕਤ ਆਪ ਵਧਾਵਾਂ ਜੱਜਾ ਜੋਤਨ ਜੀਵਤ ਜਰਾਵੇ ਜੋਵਨ ਜਾਰ ਜੁਗਤ ਸੋ ਪਾਵੇ ਅਸ ਜਰ ਪਰ ਜਰ ਜਰ ਜਬ ਰਹੇ ਤਬਲਾ ਤਬ ਜਾਏ ਜੋਤ ਅਜਾਰੋ ਲਹੇ ਝੱਜਾ ਉਰਜ ਸੁਝ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ ਰਹੋ ਚਜਕ ਨਾਹੀਂ ਪਰਵਾਨਾ ਕੱਥ ਝੱਖ ਚੱਖ ਔਰਨ ਸਮਝਾਵਾਂ ਝਗਰ ਕੀਏ ਝਗਰੋ ਹੀ ਪਾਵਾਂ ਜੰਝਾ ਜਗਜੋ ਕੱਟ ਰਹੋ ਦੂਰ ਕਹਾਂ ਤਾਂ ਜਾਏ ਜਾ ਕਰਨ ਜਗ ਟੂੰਡਿਓ ਨੇਰੋ ਪਿਆਲ ਤੋਂ ਤਾਏ ਨਾ ਵਿਗਟ ਘਾਟ ਕੱਟ ਮਾਹੀ ਖੋਲ ਕਪਾਟ ਮੈਲ ਕੇ ਨਾ ਜਾਈ ਦੇਖ ਢਲ ਢਲ ਕਤੇ ਨਾ ਜਾਵਾਂ ਰੇ ਲਪਟਾਏ ਕੱਟ ਪਰ ਚੋ ਪਾਵਾਂ ਠੱਠਾ ਏ ਦੂਰ ਠੱਗ ਨੀਰਾ ਨੀਠ ਨੀਠ ਮਨ ਕੀਆ ਤੀਰਾ ਜਿਨ ਠੱਗ ਠੱਗਿਆ ਸਗਲ ਜਗ ਖਾਵਾਂ ਸੋ ਠੱਗ ਠੱਗਿਆ ਠੁਰ ਮਨਾਵਾਂ ਡੱਡਾ ਡਰ ਉਪਜੇ ਡਰ ਜਾਈ ਤਾਂ ਡਰ ਮੈਂ ਡਰ ਰਿਹਾ ਸਮਾਈ ਜਿਉਂ ਡਰ ਡਰੇ ਤਾਂ ਫਿਰ ਡਰ ਲਾਗੇ ਨਿਡਰ ਹੁਆ ਡਰੋ ਰੁਜ ਭਾਗੇ ਢੱਡਾ ਟਿਗ ਢੂਡੇ ਕੱਤ ਆਨਾ ਢੂੰਡਤ ਹੀ ਟਹਿ ਗਏ ਪੁਰਾਣਾ ਚੜ ਸਫੇਰ ਢੂੰਡ ਜਾ ਵਾਵਾਂ ਜੇ ਗੜ ਗਏ ਉਹ ਸੋ ਗੜ ਪੈ ਪਾਵਾਂ ਨਾਣਾ ਰਾਣ ਰੁੱਤੋ ਨਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇ ਨਾ ਨਿਵੇ ਨਾ ਫੁਨ ਸੰਚਰੇ ਧਨ ਜਨਮ ਤਾਈ ਕੋ ਗਣੇ ਮਾਰੇ ਕਹਿ ਤਜ ਜਾਏ ਕਣੇ ਤੱਤਾ ਤਤਰਿਓ ਨੈਨ ਜਾਈ ਤਨ ਤ੍ਰਿਪਵਣ ਮੇਰੇ ਉਸ ਮਾਈ ਜਿਉਂ ਤ੍ਰਿਪਵਣ ਤਨ ਮਾਏ ਸਮਾਵਾਂ ਤੋਂ ਤੱਤੇ ਤਤ ਮਿਲਿਆ ਸੱਚ ਪਾਵਾਂ ਥੱਥਾ ਥਾ ਥਾ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂ ਉਹ ਥਾ ਇਹ ਥਿਰ ਨਾ ਰਹਾਵਾਂ ਥੋੜੇ ਥਲ ਥਾਨਕ ਆਰੰਭੇ ਬੇਨੀ ਥਾਬੇ ਮੰਦਰ ਥੰਬੇ ਦੱਦਾ ਦੇਖ ਜੋ ਬਿਨਸ ਬਿਨ ਸੰਹਾਰਾ ਜਸ ਦੇਖ ਤਸ ਰਾਖ ਨਜਾਰਾ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੁੰਚੀ ਜਬ ਦੀਸੇ ਦਸਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੁੰਚੀ ਜਬ ਦੀਜੇ ਤੋ ਦਿਆਲ ਕੋ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਜੇ
ਧਰਦਾ ਅਰਦੇ ਉਰਦਨ ਵੀਰਾ ਅਰਦੇ ਉਰਦੇ ਮੰਜ ਮਜੀਰਾ ਬਸੀਰਾ ਅਰਦੇ ਛਾੜ ਉਰਦ ਜੋ ਆਵਾਂ ਤੋ ਅਰਦੇ ਉਰਦ ਮਿਲਿਆ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ ਨਾਨਾ ਨਿਸਦਿਨ ਨਿਰਖਤ ਜਾਈ ਨਿਰਖਤ ਨੈਣ ਰਹੇ ਦਰਤ ਬਾਈ ਨਿਰਖਤ ਨਿਰਖਤ ਜਬ ਪਾਏ ਜਪਾਵਾਂ ਤਬਲੇ ਨਿਰਖੇ ਨਿਰਖ ਮਿਲਾਵਾਂ ਪੱਪਾ ਪਰ ਪਾਰ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂ ਪਰਮ ਜੋਤ ਸਿਉਂ ਪਰ ਚੋ ਲਾਵਾਂ ਪੰਚੋ ਇੰਦਰੀ ਨਿਰਗ੍ਰਹਿ ਕਰੀ ਪਾਪਨ ਦੋ ਨਿਰਵਰੀ ਪੱਪਾ ਬਿਨ ਫੁਲੋ ਫਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਫਲ ਫੰਕ ਲੱਗੇ ਜੋ ਕੋਈ ਦੂਣ ਨਾ ਪਰੀ ਫੰਕ ਵਿਚਾਰੇ ਤਾਂ ਫਲ ਫੰਕ ਸਵੇ ਧਨ ਫਾਰੇ ਬੱਬਾ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦ ਮਿਲਾਵਾਂ ਬਿੰਦੇ ਬਿੰਦ ਨਾ ਵਿਚਰਨ ਪਾਵਾਂ ਬੰਦੋ ਹੋਏ ਬੰਦਗੀ ਰਹੇ ਬੰਦਕ ਹੋਏ ਬੰਦ ਸੁਧ ਲਏ ਪੱਬਾ ਪੇਦੇ ਪੇਦ ਮਿਲਾਵਾਂ ਅਬ ਪਉ ਪਾਨ ਭਰੋਸੋ ਆਵਾਂ ਜੋ ਵਾਰ ਸੋ ਪੀਤਰ ਜਾਣਿਆ ਪਿਆ ਪੇਦ ਭੂਪਤ ਪਹਿਚਾਨਿਆ ਮਾਮਾ ਮੂਲ ਗਿਆ ਮਨ ਮਾਨੇ ਮਰਮੀ ਹੋਏ ਸੋ ਮਨ ਕੋ ਜਾਣੇ ਮਤ ਕੋਈ ਮਨ ਮਿਲਤਾ ਬਿਲ ਮਾਵੇ ਮਗਨ ਪਿਆ ਤੇ ਸੋ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਮਾਮਾ ਮਨ ਸਿਉਂ ਕਾਜ ਹੈ ਮਨ ਸਾਧੇ ਸਦ ਹੋਏ ਮਨ ਹੀ ਮਨ ਸਿਉਂ ਕਹੇ ਕਬੀਰਾ ਮਨਸਾ ਮਿਲਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਮਨ ਸਕਤੀ ਇਹ ਮਨ ਸੀਓ ਇਹ ਮਨ ਪੰਚ ਤੱਤ ਕੋ ਜੀਓ ਇਹ ਮਨ ਲੈ ਜਾਓ ਉਨ ਮਨ ਰਹੇ ਤੋ ਤੀਨ ਲੋਕੀ ਬਾਤੇ ਕਹੇ ਜਜਾ ਯੋ ਜਾਨੋ ਤੋ ਦੁਰਮਤ ਹਨ ਕਰ ਬਸ ਕਾਇਆ ਗਾਓ ਰਣ ਤੋ ਪਾਜੇ ਨੇ ਸੂਰੋ ਥਾਰੋ ਨਾਓ ਰਾਰਾ ਰਸ ਨਿਰਸ ਕਰ ਜਾਣਿਆ ਹੋਏ ਨਿਰਸੋ ਰਸ ਪੈ ਜਾਣਿਆ ਇਹ ਰਸ ਛਾਡੇ ਹੋਰ ਰਸ ਪਾਵਾਂ ਉਹ ਰਸ ਪੀਵਾਂ ਇਹ ਰਸ ਨਹੀਂ ਪਾਵਾਂ ਲੱਲਾ ਐਸੇ ਲੈ ਮਨ ਲਾਵੇ ਅਨੰਤ ਨ ਜਾਏ ਪਰਮ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਅਰਜੋ ਤਾ ਪ੍ਰੇਮ ਲਿਵਲਾਏ ਤੋ ਲੈ ਚਰਨ ਸਮਾਵੇ ਬਾਬਾ ਵਾਰ ਵਾਰ ਬਿਸਨ ਸਮਾਰ ਬਿਸਨ ਸਮਾਰੇ ਨਾਵੇ ਹਾਰ ਬਲ ਬਲ ਜੇ ਬਿਸਨ ਤਨਾ ਜਸ ਗਾਵੇ ਬਿਸ ਮਿਲੇ ਸਭ ਹੀ ਸੱਚ ਪਾਵੇ ਬਾਬਾ ਵਾਹੀ ਜਾਨੀਏ ਬਾ ਜਾਨੇ ਹੋਏ ਇਹ ਅਰੋਸਾ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਮਿਲਤ ਨਾ ਜਾਣੇ ਕੋਏ ਸੱਸਾ ਸੋ ਨੀਕਾ ਕਰ ਸੋਦੋ ਘਟ ਪਰ ਚਾ ਕੇ ਬਾਤ ਨ ਰੋਦੋ ਘਰ ਪਰ ਚੇ ਸੋ ਉਪਜੇ ਪਾਓ ਪੂਰ ਰਿਹਾ ਤੈ ਤ੍ਰਿਪਣ ਰਾਓ ਖਾਖਾ ਖੋਜ ਪਰੇ ਜੋ ਕੋਈ ਜੋ ਖੋਜੇ ਸੋ ਬਹਰ ਨ ਹੋਈ ਖੋਜ ਬੂਝ ਜੋ ਕਰੇ ਵਿਚਾਰਾ ਤੋ ਪਵ ਜਲ ਤਰਤ ਨ ਲਾਵੇ ਬਾਰਾ ਸੱਸਾ ਸੋ ਸਹਿ ਸੇਜ ਸਵਾਰੇ ਸੋਈ ਸਹੀ ਸੰਦੇ ਨਿਵਾਰੇ ਅਲਪ ਸੁਖ ਚਾੜ ਭਰਮ ਸੁਖ ਪਾਵਾਂ ਤਾਵੇ ਤੇ ਉਹ ਕੰਤ ਖਾਵਾਂ ਹਾਹਾ ਹੋਤ ਹੋਏ ਨੀ ਜਾਣਾ ਜਾ ਵੀ ਹੋਏ ਕਵੇ ਤ ਮਨ ਮਾਨਾ ਹੈ ਤੋ ਸਹੀ ਲਖੇ ਜੋ ਕੋਈ ਤਬ ਉਹੀ ਹੋਏ ਹੁਣ ਹੋਈ ਲਿਉ ਲਿਉ ਕਰਤ ਫਿਰੇ ਸਭ ਲੋਗ ਤਾ ਕਾਰਨ ਵਿਆਪੇ ਬੋਰ ਸੋਗ ਲਖਮੀ ਵਾਰਸਿਓ ਹਰ ਲਿਉ ਲਾਵੇ ਸੋਗ ਮਿਟੇ ਸਭ ਹੀ ਸੁਖ ਪਾਵੇ ਖਾਖਾ ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਗਏ ਕੇਤੇ ਖਿਰਤ ਖਪਤ ਜੂਨੇ ਚੇਤੇ ਅਬ ਜਗ ਜਾਨ ਜੋ ਮਨਾ ਰਹੇ ਜੈ ਕਾ ਵਿਛੜਾ ਥੇ ਥਿਰ ਲਹਿ ਬਾਵਨ ਅਖ ਜੋ ਰੇ ਆਨ ਸਕਿਆ ਨਖਰ ਏਕ ਪਛਾਣ ਸਤ ਕਾ ਸ਼ਬਦ ਕਬੀਰਾ ਕਹੇ ਪੰਡਤ ਹੋਏ ਸੁਹਨ ਪੇ ਰਹੇ ਪੰਡ ਲੋਗੇ ਕਿਉ ਵਿਵਹਾਰ ਗਿਆਨ ਬੰਤ ਕੋ ਤਤ ਵਿਚਾਰ ਜਾਂ ਕੇ ਜੀ ਐਸੀ ਬਦ ਹੋਏ ਹੋਈ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਜਾਣੇ ਗਾ ਸੋਈ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ ਰਾਹ ਗੌੜੀ ਤਿੰਥਗੀ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕੀ ਸਲੋਕ 15 ਤਿੰਥਗੀ ਸਾਤ ਵਾਰ ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਵਾਰ ਨ ਵਾਰ ਸਾਧਕ ਸਹਿਦ ਲਖੇ ਜੋ ਪਿਓ ਆਪੇ ਕਰਤਾ ਆਪੇ ਦਿਓ ਤਿੰਥਗੀ ਅਮਾਵਸ ਮੈਂ ਆਸ ਨਿਵਾਰੋ ਅੰਤਰ ਜਾਮੀ ਰਾਮ ਸਮਾਰੋ ਜੀਵਤ ਭਾਵੋ ਮੁਖ ਦੁਆਰ ਅਨਪੋ ਸ਼ਬਦ ਤਤ ਨਿਜ ਸਾਰ ਚਰਨ ਕਮਲ ਗੋਬਿੰਦ ਰੰਗ ਲਾਗਾ ਸੰਤ ਪ੍ਰਸਾਦ ਭੈ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਮੈਂ ਅੰਦਨ ਜਾਗਾ ਰਹਾਓ ਪਰਵਾ ਪ੍ਰੀਤਮ ਕਰੋ ਵਿਚਾਰ ਘਟ ਮੈਂ ਖੇਲੇ ਘਟ ਪਾਰ ਕਾਲ ਕਲਪਨਾ ਕਦੇ ਨ ਖਾਏ ਆਦਿ ਪੁਰਖ ਮੈਂ ਰਹੇ ਸਮਾਏ ਦੁਤੀਆ ਦੋ ਕਰ ਜਾਣੇ ਅੰਗ ਮਾਇਆ ਬ੍ਰਹਮ ਰਮੇ ਏ ਸਭ ਸੰਗ ਨਾ ਹੋ ਵੱਡੇ ਨ ਘਟਤਾ ਜਾਏ ਅਕੁਲ ਨਿਰੰਜਨ ਏਕੇ ਪਾਏ ਦਿਤੀਆ ਤੀਨੇ ਸਮ ਕਰ ਲਿਆਵੇ ਆਨੰਦ ਮੂਲ ਪਰਮ ਪਦ ਪਾਵੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਉਪਜੇ ਬਿਸਰਾ ਵਿਸਵਾਸ ਬਾਹਰ ਪੀਤਰ ਸਦਾ ਪ੍ਰਗਾਸ ਚੌਥੇ ਚਾਂਚਲ ਮਨ ਕੋ ਗਹੋ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਸੰਗ ਕਬੂ ਨ ਬਹੁ ਜਲ ਥਲ ਮਾਹੇ ਆਪੇ ਆਪ ਆਪੇ ਜਪੋ ਆਪਣਾ ਜਾਪ ਪਾਂਚੇ ਪੰਚ ਤਤ ਵਿਸਤਾਰ ਕਨ ਕਾਮਨੀ ਜਗ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰੇਮ ਸੁਧਾ ਰਸ ਪੀਵੇ ਕੋਏ ਜਰਾ ਮਰਨ ਦੁੱਖ ਫੇਰਨ ਹੋਏ
ਛੱਟ ਖੱਟ ਚੱਕਰ ਚੌਂਗ ਦਿਸਤਾਏ, ਬਿਨ ਪਰਚੇ ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਤੇਰਾ ਰਹਾਏ। ਦੌਦਾ ਮੇਟ ਕੇ ਮਾਂਗੇ ਰਹੋ, ਕਰਮ ਧਰਮ ਕੀ ਸੂਲ ਨ ਸਹੋ। ਸੰਤੇ ਸਤਕਰ ਬਾਚਾ ਜਾਣ, ਆਤਮ ਰਾਮ ਲਿਓ ਪਰਵਾਨ। ਛੂਟੇ ਸੰਸਾ ਮਿਟ ਜਾਏ ਦੁੱਖ, ਸੁਨ ਸਰੋਵਰ ਪਾਵੋ ਸੁਖ। ਅਸ਼ਟਮੀ ਅਸ਼ਟ ਧਾਤ ਕੀ ਕਾਇਆ, ਤਾਂ ਮੈਂ ਕੁੱਲ ਮਾਂ ਨਿਧ ਰਾਇਆ। ਗੁਰਗਮ ਗਿਆਨ ਬਤਾਵੇ ਵੇਦ, ਉਲਟਾ ਰਹੇ ਅਪੰਗ ਛੇਦ। ਨੌਵੀਂ ਨਵੇਂ ਦੁਆਰ ਕੋ ਸਾਧ, ਬਹਿਤੀ ਮਨਸਾ ਰਾਖੋ ਬਾਂਧ। ਲੋਭ ਮੋਹ ਸਭ ਬਿਸਰ ਜਾਓ, ਜੁਗ ਜੁਗ ਜੀਵੋ ਅਮਰ ਫਲ ਖਾਵੋ। ਦਸਵੀਂ ਦੈ ਦਸੋਏ ਆਨੰਦ, ਛੁੱਟੇ ਪਰ ਮਿਲੇ ਗੋਬਿੰਦ। ਜੋਤ ਸਰੂਪੀ ਤਤ ਅਨੂਪ, ਅਮਲ ਨ ਮਲ ਨਾ ਸ਼ਾਹ ਨੀ ਧੂਪ। ਇਕਾਦਸੀ ਏਕ ਦਿਸ ਤਾਵੇ, ਤੋ ਜੋ ਨੀ ਸੰਕਟ ਬੋਰ ਨਾ ਆਵੇ। ਸੀਤਲ ਨਿਰਮਲ ਪਿਆ ਸਰੀਰਾ, ਦੂਰ ਬਤਾਵਤ ਪਾਇਆ ਨੀਰਾ। ਬਾਰਸ ਬਾਰਾਂ ਉਗਵੇ ਸੂਰ, ਐਨਸ ਬਾਜੇ ਅਨਹਦ ਤੂਰ। ਦੇਖਿਆ ਤਿੰਗ ਲੋਕਾ ਪੀਓ, ਚਰਜ ਪਿਆ ਜੀਵ ਤੇ ਸੀਓ। ਤੇਰਸ ਤੇਰੇ ਅਗਮ ਬਖਾਣ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਵਿੱਚ ਸਮ ਪਹਿਚਾਣ। ਨੀਚ ਊਚ ਨਹੀਂ ਮਾਣ ਅਪਮਾਨ, ਵਿਆਪਕ ਰਾਮ ਸਗਲ ਸਮਾਨ। ਚੌਦਾਂ ਚੌਦਾਂ ਲੋਕ ਮਝਾਰ, ਰੋਮ ਰੋਮ ਬਸੇ ਮੁਰਾਰ। ਸਤ ਤੋਕਾ ਧਰੋ ਧਿਆਨ, ਕਥਨੀ ਕਥੀਏ ਬ੍ਰਹਮ ਗਿਆਨ। ਪੁਨਿਓ ਪੂਰਾ ਚੰਦ ਆਕਾਸ, ਪਸਰੇ ਕਲਾ ਸਹਿਜ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਆਦਾਂਤ ਮਧ ਹੋਏ ਦਿਆ ਵਿਥੀਰ, ਸੁਖ ਸਾਗਰ ਮੈਂ ਰਮੇ ਕਬੀਰ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਰਾਗ ਗੋੜੀ ਵਾਰ ਕਬੀਰ ਜੀ ਕਿਓ ਕੇ ਸਤਵਾਂ। ਵਾਰ ਵਾਰ ਕੇ ਗੁਣ ਗਾਵੋ, ਗੁਰਗਾਂ ਭੇਸ ਹਰ ਕਾ ਪਾਵੋ ਰਹਾਓ। ਅਦਿਤ ਕਰੇ ਭਗਤ ਆਰੰਭ, ਕਾਇਆ ਮੰਦਰ ਮਨਸਾ ਥੰਭ। ਐਨ ਐਸ ਅਖੰਡ ਸੁਰੀ ਜਾਏ, ਤੋ ਅਨਹਦ ਬੇਣ ਸਹਿਜ ਮੈਂ ਬਾਏ। ਸੋਮਵਾਰ ਸਸ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਚਰੇ, ਚਾਖਤ ਬੇਗ ਸਗਲ ਬਿਖਰੇ। ਬਾਣੀ ਰੋਕਿਆ ਰਹੇ ਦੁਆਰ, ਤੋ ਮਨ ਮਤਬਾਰੋ ਪੀਵਣ ਹਾਰ। ਮੰਗਲਵਾਰੇ ਲੇ ਮਾਹੀਤ, ਪੰਜ ਚੋਰ ਕੀ ਜਾਣੇ ਰੀਤ। ਘਰ ਛੋਡੇ ਬਾਹਰ ਜਿਨ ਜਾਏ, ਨਾਤਰ ਖਰਾ ਰਿਸੇ ਹੈ ਰਾਏ। ਬੁੱਧਵਾਰ ਬੁੱਧ ਕਰੇ ਪ੍ਰਗਾਸ, ਹਿਰਦੇ ਕਮਲ ਮੈਂ ਹਰ ਕਾ ਵਾਸ। ਗੁਰਮਿਲ ਦੋ ਇੱਕ ਸਮ ਧਰੇ, ਉਰਧ ਪੰਖ ਲੈ ਸੁਧਾ ਕਰੇ। ਬ੍ਰਿਸਪਤ ਵਿਖਿਆ ਦੇ ਬਹਾਏ, ਤੀਨ ਦੇਵ ਇੱਕ ਸੰਗ ਲਾਏ। ਤੀਨ ਨਦੀ ਤਰੇ ਕੁੱਟੀ ਮਾਏ, ਐਨਿਸ ਕਸਮਲ ਧੋਵੇ ਥਾਏ। ਐਨਿਸ ਕਸਮਲ ਧੋਵੇ ਨਾਹੇ, ਸੁਕਿਰਤ ਸਾਰੇ ਸੋਏ ਵਰਤ ਚੜੇ। ਆਂਦਿਨ ਆਪ ਆਪ ਸਿਓ ਲੜੇ, ਸੁਰਖੀ ਪੰਚੋ ਰਾਖੇ ਸਭੇ। ਤੋ ਦੂਜੀ ਦਿਸ਼ਟ ਨਾ ਪੇਸੇ ਕਬੇ, ਥਾਵਰ ਥਿਰ ਕਰ ਰਾਖੇ ਸੋਏ। ਜੋਤ ਦੀ ਬੱਟੀ ਕਰਮੇ ਸੋਏ ਜੋਏ, ਬਾਹਰ ਭੀਤਰ ਪਿਆ ਪ੍ਰਗਾਸ। ਤਬ ਹੁਆ ਸਗਲ ਕਰਮ ਕਾ ਨਾਸ, ਜਬਲਾ ਘਟ ਮੈਂ ਦੂਜੀ ਆਣ। ਤੋਲੋ ਮਹਿਲ ਨਾ ਲਾਭੇ ਜਾਨ, ਰਾਮ ਤ ਰਾਮ ਸਿਓ ਲਾਗੋ ਰੰਗ। ਕਹਿ ਕਬੀਰ ਤਬ ਨਿਰਮਲ ਅੰਗ, ਰਾਗ ਗੋੜੀ ਜਿੱਤੀ ਬਾਣੀ ਨਾਮ ਦਿਓ ਜੀਓ ਕੀ। ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਿਗੁਰ ਪ੍ਰਸਾਦ, ਦੇਵਾ ਭਾਣ ਤਾਰੇ ਲੇ, ਰਾਮ ਕਹਿਤ ਜਨ ਕਸ ਨਾ ਤਰੇ ਰਹੋ। ਤਾਰੀ ਲੇ ਗਨਕਾ ਬਿਨ ਰੂਪ ਕੁਵੇਜਾ ਵਿਆਦ, ਅਜਾ ਮਲ ਤਾਰੀ ਲੇ, ਚਰਨ ਬਦਕ ਜਨ ਤਿਉ ਮੁਕਤ ਪਏ। ਹੋਮ ਬਲ ਬਲ ਹੀਨ ਕਰਮ ਹੀਨ, ਨਾਮੇ ਕੇ ਸੁਆਮੀ ਤਿਉ ਤਰੇ। ਰਾਗ ਗੌੜੀ ਰਵਿਦਾਸ ਜੀ ਕੇ ਪਦੇ, ਗੌੜੀ ਗੁਆਰੇਰੀ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਸਤਨਾਮ। ਕਰਤਾ ਪੁਰਖ ਗੁਰਪ੍ਰਸਾਦ, ਮੇਰੀ ਸੰਗਤ ਪੋਚ ਸੋਚ ਦਿਨ ਰਾਤੀ। ਮੇਰਾ ਕਰਮ ਕੁਟਿਲਤਾ ਜਨਮ ਕੁਬਾਤੀ, ਰਾਮ ਗਸਈਆ ਜੀ ਕੇ ਜੀਵਣਾ। ਮੋਏ ਨਾ ਵਿਸਾਰੋ, ਮੈਂ ਜਨ ਤੇਰਾ ਰਹਾਓ। ਮੇਰੀ ਹਰੋ ਬਿਵਤ ਜਨ ਕਰੋ ਸੁਭਾਈ, ਚਰਨ ਨਾ ਛਾੜੂ ਸੀਰ ਕਲ ਜਾਈ। ਕਹੋ ਕਬੀਰ ਪਰੋ ਤੇਰੀ ਸਾਬਾ, ਬੇਗ ਮਿਲੋ ਜਨ ਕਰੇ ਨਾ ਬਿਲਾਂਬਾ। ਬੇਗਮਪੁਰਾ ਸੈਰ ਕੋ ਨਾਓ, ਦੁਖੋ ਅੰਧੋ ਨਹੀਂ ਤੇਰੀ ਥਾਓ। ਨਾ ਤਸਵੀ ਸਖ ਰਾਜ ਨਾ ਮਾਲ, ਖੋਫ ਨਾ ਖਾਤਾ ਨਾ ਤਰਸ ਜਵਾਲ। ਆਬ ਮੋਏ ਖੂਬ ਬਤਨ ਗੇ ਪਾਈ, ਊਆ ਖੈਰ ਸਦਾ ਮੇਰੇ ਪਾਈ ਰਹੋ। ਕਾਇਮ ਦਾਇਮ ਸਦਾ ਪਤਸ਼ਾਹੀ, ਦੋਮ ਨਾ ਸੇਮ ਏਕ ਮੈਂ ਸੋ ਆਹੀ। ਅਬਾਦਾਨ ਸਦਾ ਮਸੂਰ, ਊਆ ਗਨੀ ਬਿਸੇ ਮਾਮੂਰ। ਤਿਉਂ ਤਿਉਂ ਸਹਿਲ ਕਰੇ ਜਿਉ ਪਾਵੇ, ਮਹਰਮ ਮਹਲ ਨੋ ਨਾ ਕੋ ਅਟਕਾਵੇ। ਕਹਿਰ ਬਦਾਸ ਖਲਾਸ ਚਮਾਰਾ,
जो हम सहरी सो मीत हमारा एक ओंकार सतगुर प्रसाद गौड़ी बिरागण रविदास जियो काटा बट डोंगर कणा एक निर्गुण बैलस हमार मैये सुख बेनती मेरी पूजी मेरी पूंजी राख मरार को बन जा रो राम को मेरा टांडा ला दिया जाए रे रहो हो बन जा रो राम को सहज करो बपार मैं राम नाम तन ला दिया बिखला दी संसार और बार बार के दानिया लिख ले हो आल पताल मुहे जम डांडन लागी ता जीले सर्व जंजाल जैसा रंग कुसंब का तैसो ए संसार मेरे रमैये रंग मजीठ का कौ रविदास चमार गौड़ी पूर्वी रविदास जियो एक ओंकार सतगुर प्रसाद कूप भरियो जैसे दादरा सब कुछ देश बदेश न बूज ऐसे मेरा मन बिखिया बिमोया कछ आरा पार न सूज सगल पवन के नायका एक शिन दर्श दिखाए जी राहो मलन पई मत माधवा तेरी गत लखी न जाए करो कृपा परम चूकी मैं समत दे समझाए जोगी सर पावे नहीं ते गुण कथन अपार प्रेम भक्त के कारने कौ रविदास चमार गौड़ी बैरागण एक ओंकार सतगुर प्रसाद

क्या संसार आप पाए आपे दे आपे दुर्मत मन है करे गुर प्रसाद वसाए मन आए दुख नेरा विच हो जाए साच प्यारा आप करे अवरी को साच न दे जे किसै देव खड़ाए नानक आगे पूछ न ले आसा महला पहला ताल मदीरे घट के घट दौलक किसै देव खड़ै नानक आगे पूछ न ले ताल मदीरे घट के घट दौलक दुनिया वजहै वाज नारद नाचै कल का पाओ जति सति कह राख है पाओ नानक ना बिटहो कुरबाण अंधी दुनिया साहिब जाण राहो गुरु पास हो फिर चेला खाए ताम प्रीत वसै घर आए जे सो वरिया जीवन खाण खसम पछाणै सो दिन प्रवाण दर्शन देखिया दया न होए लय दिते विण रह न कोए राजा न्याओ करे हाथ होए कह खुदाए न मानै कोए मानस मूर्त नानक नाम करनी कुतव दर परवार गुर प्रसाद जाड़ै मेहमान ता किस दरग है पावै माड आसा महला पहला जेता शब्द सुरत धुन तेती जेता रूप काया तेरी तू आपे रसना आपे बसना आवरण दूजा कह बाई साहिब मेरा एको है भाई एको है रहाओ आपे मारे आपे छोड़ै आपे लेवै दे आपे विखै आपे विकसै आपे नदर के जो किछ करणा सो कर रहे आवरण करणा जाई जैसा वरता तैसो कहिए सब तेरी वडियाई कल कल वाली माया मद मीठा मन मत वाला पीवत रहै आपे रूप करे बहुपाती नानक बपड़ा एव कह आसा महला पहला वाजा मत पखावच फाओ होए आनंद सदा मनचाओ हा भगत हो तपताओ इत रंग नाच रख रख पाओ पूरे ताल जाने साला होर नचना खुशियां मनमाह रहाओ सासन तो कवजा दुतालो पैरी वाजा सदा निहालो राग नाद नहीं दूजा पाओ इत रंग नाचो रख रख पाओ पौ फेरी होवै मन चीत बहद्या उठद्या नीता नीत लेटन लेट जाना तन स्वाह इत रंग नाचो रख रख पाओ सिख सभा दिखिया का पाओ गुरमुख सुन ना साचा नाओ

अग्नि का बंध किया, अंधलाए दह दिसे मूंड कटाया, रावण मार क्या बड़ा पया, क्या उपमा तेरी आखी जाए, तू सर्वे पू रहे आओ लिबलाए रहाओ, जीव पाए जुगत हाथ की नी, काली नाथ क्या बड़ा पया, किस तू पुरख जोरू कौन कही आए, सर्व निरंतर रव रहया, नाल कुटंब साथ वरतारा,

खीर मिथ्या रत नू पाए तरे खीर मथिया होर पकलाए जे असी किया कह नानक छपै क्यों।

नाहद बाजाय सर्व निरंतर किया सर्व निरंजन किया करिब खे अड़ जाड़ै जी कोई अमृत पीवै सोई रहाओ जिन पिया से मुक्त भय है टूटे बंधन फाहे ज्योति ज्योत सबाड़ी भीतर ताओ छोड़े माया केला।

No, tässä tiedä. Hänekäs vandaa tänne mailaavu. Uesoko tälläs maan neipaavu. Manmeen chetvo esi asai. Priyadekti jivo meri mai. Bohut abseekhe hoi vijanu kitina lekhe. माई कहा करो ए मन न तीरे प्रिया प्रीतम बैराग हिरे रहो बस्तर बे प्यूखन सुख बहुत बसेखे ओ पी जानो किते न लेखे पत सो बार मान महत आज्ञाकारी सगल जगत ग्रह सा है सुंदर लाल प्रभावा ता सदा निहाल व्यंजन भोजनक प्रकार रंग तमासे बहुत विस्तार राज मेलक अर बहुत फरमायस मानी त्रापे तिसना ना जायस मिल मिल वे दिन ना बिहावे मिले प्रभु ता सब सुख पावे खोजत खोजत सुनिए सोए साध संगत बिन तरयो ना कोई जिस मस्तक भाग तिन सतगुर पाया पूरी आसा मंत्र पताया

तृतीया तेरा सुंदर थान, बिगड़ रूप मन होए अभिमान, सोनी स्वरूप सजान विचखण, अत गर्भे मोए फाकी तू राओ, आसूची तेरी पाकसाल, कर स्नान पूजा तिलक लाल, गली गर्भे मुख हो गोवे गोवे ज्ञान।

को किसकी तात बेमोता जा बे परवाहो नानक दास कहो गुरबाहो आसम हल्ला पंजवा हर रस छोड़ हो छे रस माता घर में बस बाहर उठ जाता सुनिए जाए सच अमृत कथा रार करत झूठी लग गाथा रहाओ बजो साहब का सेव वेरानी ऐसे गुणो सा दियो प्राणी तिस स्यों लोक जो साधी संगी कामना आवे सो फिर मंगी को नानक प्रभ दीन दयाला ज्यों पावे त्यो कर प्रित पाला आसा महला पंजवा जी प्राण तन हर को नाम इहा उहा उन संग काम मेन हर नाम अवर सब थोरा तेवता गावे हर दर्शन मन मोरा रहाओ भगत भंडार गुरबाणी लाल गावत सुनत कमा

सुन सुंदर साधु बचन दारी दुख भूख मिटे तेरो सैसा सुख पावे तू सुख मन नारी रहो चरण पकार करो गुर सेवा आत्म सद विख त्यास निवारी दर्शन की होए दास दासरी ता पावे सो बाहर द्वारी यही चार यही व्यवहारा आ गया मान भगत होए तुम्हारी जो है मंत्र कमावे नानक सो पजल पार उतारी आसा महला पंजवां दुप दे पई प्राप्त मन खुद देहुरिया गोविंद मिलन किए तेरी वरिया अवर काज तेरे किते ना काम साध संगत मिल साध संगत भज केवल नाम सरंजाम लाग भव जल तरन के जन्म बिरथा जात रंग माया के रहो जप तप संजम धर्म ना कमाया सेवा साधना जान्या राया कहो नानक हम नीच करमा सरन परेकी राखो शर्मा आसा महला पंजवां तुझ में नवरनाई मैं दूजा तू मेरे मन माही तू साजन संगी पर मेरा काहे जी डराही तुमरी ओठ तुम्हारी आसा बैठत उठ सोव जागत बिसरनाई तू सास ग्रासा रहो राख राख सरन प्रभ अपनी अगन सागर बिकराला नानक के सुख दाते सतगुर हम

होई, धंधा पिट्यो पाइयो, तुम कूड़ कमावो, ओ न सुने कते तुम लोग सुनावो, जिस ते सूता नानका जगाए सोई, जे गर्भु जे अपना ता नींद न होई, जे चलदा ले चलिया के संपै नाले, ता धन संचो देख कै बुझो बिचारे, वंड करो मुख सूद लाओ मत पछोतावो, अवगुण छोड़ो गुण करो ऐसे तत्परावो, धर्म भूम सत बीज करे सिकस कमावो, ता व्यापारी जानियो लाहा ले जावो, कर्म हुआ सतगुर मिलै बुझे बिचारा, नाम बखान सुने नाम नामे ब्योहारा, ज्यों लाहा तोटा तिवें वाट चल दी आई, जो तुस पावे नानका साई वड्याई, आसा महला पहला चारे कुंडा ढूंढिया को नीमी मैंडा, जित तो पावे साहिबा तू मैं हूं तेंडा, दरबीबा मैं नीम को कह करी सलाम, इको मैंडा तू तनी साचा मुख नाम, रहाओ सिद्धा सेवन सिद्ध पीर मंग रिद्ध सिद्ध, मैं एक नाम ना विसरै साचे गुर बुद्ध, योगी पोगी कापड़ी क्या क्या पवैद संतर, गुर का शब्द न चीनई तत्सार निरंतर, पंडित पादे जोशी नित पड़े पुराना, अंतर वस्त न जाननी काट ब्रह्म लुकाना, एक तपसी बन मैं तप करे नित तीर्थ वासा, आप न चीने तापसी काहे पे उदासा, एक बिंद जतन कर राख दे।